मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हम हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मैं फरहत नाज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है।

0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का विशेष कार्यक्रम वंदना।

सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो मानो मन के भीतर भी एक नई रोशनी जग उठती है। रात की थकान धीरे धीरे दूर हो जाती है और उम्मीदों का एक नया संसार मुस्कुराने लगता है। यह नई सुबह हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है, बस विश्वास बनाए रखना होता है। इन्हीं पावन भावनाओं के साथ आरंभ करते हैं आज की वंदना।

यह भजन केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। इसमें भक्ति की मधुरता है, जीवन

की उलझनों का समाधान है और मन को शांति देने वाली एक दिव्य अनुभूति भी। जब मन व्याकुल होता है, यह भजन सुकून बनकर उतरता है और हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं।

माँ ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया की ममता और स्नेह समाया है। माँ का प्रेम निस्वार्थ, अटूट और सबसे पवित्र होता है। उसकी एक मुस्कान हमारे सारे दुख दूर कर देती है और उसकी छाया में जीवन सुरक्षित लगता है।

ईश्वर केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर उस इंसान में बसते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। हर उस दिल में भगवान का वास है जहां प्रेम, करुणा और विश्वास जीवित है। जब कोई किसी के आंसू पोंछता है या कठिन समय में सहारा बनता है, तब महसूस होता है कि ईश्वर वास्तव में हमारे बीच ही है, बस रूप बदलकर। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है अगला भजन।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। स्वर था आरती जादौन का और प्रस्तुति थी शालिनी शुक्ला की।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: अब प्रस्तुत है चिंतन।
2: सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वासों से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया बेहतर हो जाता है। हम निजी जिंदगी में और अपने पेशे में ज्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। जिंदगी सार्थक और ज्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक जरूरतें ज्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। हमारा हर व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज्यादा है तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी और अगर हानि से लाभ ज्यादा है तो वह प्रेरणा बन जाएगी। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियों और तोहफों की शक्ल में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है। वे आंखों को दिखाई नहीं देते। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रेरणा है क्या? प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। वह हमारे मन के संदेह को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। वह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है। इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होता है। सफलता के बिना जिंदगी में न तो इज्जत मिलती है, न ही घर या दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। जिंदगी उस टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस पर हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिंदगी की जरूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता है। हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति और नजरिया होती है और यह हमारे आसपास के माहौल पर असर डालती है। हम दूसरे लोगों से जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नजरिया ही है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है, इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल में बोलते जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालत में हम खुद को यह आत्म सुझाव दे सकते हैं, मैं जान से बात करते समय शांत रहूंगा और संयम से काम लूंगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख किंशुक चौहान का था और वाचन था मुकाम सिंह चौहान का।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है खेती की बातें। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गर्मी में लू से बचाव के बारे में जानकारी। वाचन अनुराधा शर्मा का है।
5: सगला किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, खूब जम के गर्मी पड़ी रही है ना, पढ़नू भी चाहिए, ये समय है गर्मी पढ़नों को, पर लू से बचाव बहुत आवश्यक है न। इना समय अपन देख ही रहे हैं कि सावधानी सुरक्षा है। तेज गर्मी से बचाव का अलग अलग तरीका है। गर्मी में थोड़ी सी सावधानी रखा, सुरक्षित रहा, सतर्क रहा, तो अपन बहुत सारी समस्या से बची जावांगा। अब देखा कि तेज गर्मी न लू से बचना के लिए खाली पेट बिल्कुल बाहर नहीं निकलनू है। तेज धूप न तेज गर्मी जी है, फिर दिन का 12 बजे से लेना 4 बजे तक थोड़ो सो मौसम विपरीत रहे, इना समय अपन कोशिश करा कि ज़्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़े। पर किसान भाई बहन उनके काम ऐसा है कि भाई घर में बैठी के होए भी नहीं तो निकलनू पड़े, तो बचाव का साथ निकला। बचाव का साथ का ही कि भाई तेज धूप में बाहर निकलना से पहला खूब सारा पानी पीने निकला न, साथ में अपना साथ पानी के भरी के भी निकला। कोशिश करा कि हल्का ढीला कपड़ा पहरी के जाए न, साथ में सिर के ढकनू बहुत आवश्यक है। अपना पास टोपी है तो टोपी सी पहन लो, नहीं तो गमछा सी बांधी लो, और नहीं तो छातों का भी है तो छातों लेने भी आप बाहर जा सको। धूप में काम करता समय थोड़ो से इन्हीं बात को ध्यान रखनू है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ो आराम करनू भी बहुत आवश्यक है। लगातार काम करनू बिल्कुल जरूरी नहीं है न, एकासी कही हो कि बहुत थकान हुई जाए, एकदम से शरीर को पानी उड़ी जाए, तो ऐसी स्थिति में काम करता करता बीच बीच में से थोड़ा देर बैठी जाए, फिर पानी पीला, फिर कभी कोई नमक में शक्कर को घोल अपना पास हो तो वो भी पीला, तो लगातार ऊर्जा बनी रहेगी। एक साथ चीज ध्यान रखने की है कि भाई गर्मी में भूख कम लगे पर प्यास बहुत लगे, तो तरल पदार्थ जितना अपना हो सके वो अपन पीला कि केरी को पनो है, छाछ है, नींबू पानी है, अमलाणो है, ये सब चीज़ ऊर्जा देगी। कोई ऐसा फल भी है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ऐसा मौसमी फल है नहीं जी, हरी सब्जी इसका साथ इनके भी ले ला, क्योंकि इनका से कही हो कि पानी की मात्रा भी शरीर में अच्छी हुई जाए न, ऊर्जा भी मिली जाए। सबसे पहले जी बात को ध्यान रखनू है कि जब भी घर से बाहर निकला तो खाली पेट बिल्कुल धूप में नहीं जानू है। एक बात अपना समझने की है कि चाय कॉफी को सेवन थोड़ो सो कम इना समय में करनू पड़ेगो, क्योंकि चाय कॉफी से गर्मी एकदम बढ़ी जाए। भाई जिनकी आदत है वो तो थोड़ी सी पिएगा भी, पन कम मात्रा में लो। तला भुना जी पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उनका सी थोड़ो सो दूरी रखनू पड़ेगा। न बच्चा न बुजुर्ग न को इन्हीं धूप में बिल्कुल आवश्यक नहीं है बाहर जानू, तो उनके घर में रखा है इना समय। बाहर खेलने नहीं दा बच्चा उनके, बुजुर्ग भी घर में रहे। अब कई हो कि इतना सारा अपन सब अपनी बचाव को उपाय भी कर ला, पर उसका बाद भी कभी कभी कई हो कि लू लगी जाए ना, ऐसो हाथ पैर ढीला पड़े कि कहीं कहनू नहीं, एकदम ऐसो लगे कि शरीर को तापमान बहुत ऊपर पहुंची गो, तेज बुखार आई जाएगो, एकदम बेहोशी जैसी आने लगी जाए, चक्कर आने लगी जाए, कभी कभी ऐसा लगे कि अभी उल्टी हुई जाएगी, सिर दर्द ऐसो फटने की करे, और त्वचा में भी एकदम लाल लाल हुई जाए, एकदम जली जाए। तो ये लक्षण यदि हुई रहा है तो बिल्कुल अपन के ये समझने की आवश्यकता है कि लू लगी गई है। अब लू लगने पे सबसे पहले जो काम करनू है, एकदम छांव की ठंडी जगह में आराम से लेटी जानू है न, जो भी साथ में आपका है, जो भाई बहन आपका साथ उना समय है आपका साथ, वो कई करे कि एक शरीर में को ठंडा गीला कपड़ा से पूरा पोछी दे, अच्छो पानी पिलाई दे आपके न, कभी लगे कि बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ी रही है तो तुरंत नज़दीक अस्पताल में ले जानू बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बिल्कुल बात को ध्यान रखा कि लू से बचाव वो बेहतर उपाय है, पर लू लगी जाने के बाद बहुत सतर्क रहनू है, बहुत सुरक्षित रहनू है। इन्हीं बात को ध्यान रखनू है कि यदि ज्यादा स्थिति बिगड़ी रही है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जानू आवश्यक हुई जाए न, वहां जाके अपनो इलाज ला। तो आज किसान भाई बहनों से ये कहनू है।
0: खेती की बातें में आप सुन रहे थे गर्मी में लू से बचाव के बारे में जानकारी। वाचन था अनुराधा शर्मा का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
7: क्या
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: और सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग, स्वर था ए हरिहरन का और संगीत नियोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत सुनिएगा विवेक चौरसिया की वार्ता जल संरक्षण। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुन सकते हैं सुबह 7:35 से। कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे सुबह 8:30। चर्चा होगी मदर्स डे स्पेशल पर। इसके साथ ही बच्चों से माँ पर केंद्रित कविताएं और प्रेरक प्रसंग सुनवाएंगे। प्रस्तुति होगी प्रीति जोशी की। गोकुलदास खेड़े और साथियों के गाए लोकगीत प्रसारित करेंगे सुबह 9:00। फाल्गुनी पाठक के स्वर में सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 से। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग भीम पलासी। समय रहेगा सुबह 9:30। सुबह 10:00 भोपाल केंद्र से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का समय रहेगा सुबह 10:05 से। श्रोताओं अब आपको जानकारी देते हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुबह 11:00 से 3:00 तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का समय रहेगा सुबह 11:00। फिल्म संगीत सुनिएगा दोपहर 12:02 और 2:00। दोपहर 12:30 पर होगा संग्रहालय से कार्यक्रम। महिला कार्यक्रम होगा 1:00। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान सुनिएगा दोपहर 2:30 से। श्रोताओं अब एक नजर हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज का क्रम है युवा तरंग। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पर केंद्रित कार्यक्रम पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति होगी असीम कैथवास की और संयोजन राजेश कार्यक्रम प्रमुख का। फिल्म संगीत प्रसारित करेंगे शाम 5:45, रात 8:30, चित्र गीत में रात 9:15 और मन भावन कार्यक्रम में रात्रि 9:30। पंडित हरिहरन के स्वर में सुगम संगीत सुनिएगा शाम 6:30 से। शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं जगदीश यादव और साथियों के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:20 से। रात 8:00 भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुर्खियों में। और डगर विकास की ये कार्यक्रम भोपाल से ही अनुप्रसारित होगा रात 8:15 से। रात्रि 10:00 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

0: ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्य समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्च मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धेः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्डेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों विभागों स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: टपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की है। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुड्डे बेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
3: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700

रविंद्र सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुंधरा। इसके अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विवेक चौरसिया की वार्ता जल संरक्षण।

समुद्र जिसकी वस्त्र है, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

जल जीवन है, जल से ही जीवन का प्रारंभ है और जल में ही जीवन लय हो जाना है। यह बात विज्ञान भी कहता है और धर्मशास्त्र भी।

हिंदुओं के पुराण हो या मुसलमानों का कुरान या फिर ईसाइयों की बाइबल, सभी की मान्यता जल के संदर्भ में लगभग एक जैसी है, जिसका सार यही है कि जल से जीवन का प्रारंभ है और जल में ही जीवन का अंत ही नहीं, अपितु जल से ही जीवन का संचालन और जीवन की गति भी है। जल पीकर ही हम जी पाते हैं, इसीलिए जल का सबसे अच्छा और सच्चा नाम अमृत है। अमृत अर्थात जिसे पी लेने पर हम मृत नहीं होते, मरते नहीं, जीवित रह पाते हैं। गोया कि पानी न हो तो धरती पर मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र का सफाया हो जाए। इसलिए कि जल से ही धरती का सिंगार है, समृद्धि का उजाला और जीवन की ज्योति भी है। जल न हो तो न सिंगार रहे, न उजास, न ही जीवन की ज्योति। देखा जाए तो धरती पर पानी की कमी नहीं है। पृथ्वी पर आज भी भूमि का 85% हिस्सा है, जबकि जल का विस्तार 75% तक है। किंतु यह जल पीने योग्य नहीं है, इसलिए कि वह समंदर का पानी है जो खारा है और अपेय है। पीने और जीने के लिए जिस साफ शीतल जल की जरूरत है, उसके भंडार घटते जा रहे हैं। पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे पैदा नहीं किया जा सकता, किसी तरह इसका निर्माण संभव नहीं है, इसे मात्र सहेजा जा सकता है। आप जानते ही हैं कि हमें पानी 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। बारिश के मौसम में आसमान से बरसने वाले जल के रूप में, पहाड़ों से निकलने वाली नदियों और झरनों के रूप में, और धरती का सीना चीरकर कुओं या बोरिंग आदि के माध्यमों से। यूं तो विश्व स्तर पर पेयजल की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश में हालात अन्य देशों के मुकाबले अधिक चिंताजनक हैं। बीते 50 वर्षों में हमारे देश की आबादी तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन पेयजल के भंडार इससे भी अधिक तेजी से सिकुड़ते गए हैं। कारण, हमारे देश में वर्षा का जल संरक्षित करने के कारगर उपाय अब तक विकसित नहीं हो पाए हैं। आज भी बारिश के 3 से 4 महीनों में बरसने वाले पानी का लगभग 65% नालियों के रास्ते समंदर में बह जाता है। नदियों की स्थिति यह है कि बीते 5 दशकों में देश की अधिकांश प्रमुख नदियां हमारी अनदेखी और लापरवाही के कारण गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों के ताल तलैया उजाड़ हो गए हैं। वर्षा का जल ठीक से न सहेज पाने और धरती के कंठ में न उतार पाने के कारण धरती के गर्भ का घट अब रीतने लगा है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हम अपने देश में धरती का सीना चीरकर अब तक 80% से ज्यादा पानी उलीच चुके हैं। इसी कारण साल दर साल गर्मी और तीखी और अधिक कष्टदायी होती जा रही है। हमारे देश में जहां जल का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है, आज पानी की खरीद बिक्री का सालाना कारोबार 150 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हालत यह है कि देश की 125 करोड़ आबादी में से आज भी 10 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पीने का साफ पानी सुलभ नहीं है। गांव में हालात और भी खराब है। यह आंकड़ा हैरान करता है कि गांव में आज 45% ग्रामीणों के पास मोबाइल तो हैं, लेकिन पीने का साफ पानी महज 20% लोगों को ही उपलब्ध है। परिणाम, लोग पानी की पूर्ति के लिए मनमाने और असुरक्षित तरीके अपनाने को विवश

इसका दुष्परिणाम यह है कि देश का हर 10 में से एक आदमी दूषित जलजन्य रोगों से ग्रसित होकर जीवन को कष्ट के साथ ढोने को मजबूर है। ये सारे आंकड़े साक्षी हैं कि पानी के प्रति अत्यंत गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ही हम इस खतरनाक स्थिति तक आ पहुंचे हैं, जहां खाली होते तालाब, सूखती नदियां और भूजल से हीन होकर सुलगती धरती हमें पुकार कर जल संरक्षण के लिए जगा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार और अनेक सामाजिक संगठनों ने जल जागरण के अलख अपने अपने स्तर पर जगाए हैं, लेकिन अभी ये जन आंदोलन नहीं बन सके हैं। न हम जल सहेजने के प्रति गंभीर हो पाए हैं, न ही नदियों के प्रति हमारे मन में करुणा या दायित्व बोध जागा है। कहा जाने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह पेयजल के लिए ही होगा। क्या यह शुभ होगा कि पानी के लिए हम एक दूसरे की गर्दन काटें, एक दूसरे की छाती में खंजर भोंक दें? युद्ध की इस विभीषिका से यदि हमें बचना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल रूपी धन को संरक्षित करने, उसको सहेजने के प्रति संकल्पित होना ही पड़ेगा। हम कोशिश करें कि जितना आवश्यक है उतना ही जल उपयोग में लाएं। जल के उपयोग में कंजूस भले न बने पर मितव्ययी तो बने, और यदि यह भी न कर सकें तो कम से कम अपव्ययी तो न हो। मत भूलिए, जल का सदुपयोग ही उसकी बचत है, उसका संरक्षण है। यह भी कि आने वाली नस्लों के लिए हम यदि सबसे बड़ी सौगात रख सकेंगे तो वह कल कल बहती नदियां, लहराते तालाब और भरे हुए कुएं ही होंगे। जल रूपी जीवन की निधि ही हमारे बच्चों के लिए सच्चा उपहार बनेगी, क्योंकि इसी के रहते उनका जीवन बच पाएगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, मैंने जल देवता नाम की अपनी एक पुस्तक में जल संरक्षण को लेकर जल देवता का अनेक रूपों में कीर्तन किया है। मैं अपने व्याख्यानों में अक्सर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार समंदर के किनारे एक बड़े से घर में बड़ी भीषण आग लग गई। बहुत सारे लोग आसपास से आए और अपने अपने माध्यमों से, अलग अलग पात्रों से समंदर की लहरों पर जाकर उसका पानी लाने लगे और उस आग को बुझाने के निमित्त उस पर उलीचने लगे। कहानी है, कहती है कि पड़ोस के एक पेड़ पर एक चिड़िया भी बैठी हुई थी। उस चिड़िया ने जब देखा कि घर में आग लगी है तो वो चिड़िया बार बार जाती और समंदर की लहरों से अपनी चोंच भर पानी लाती और उस आग पर उलीच देती। एक कौवा जो उस चिड़िया का पड़ोसी था, वो पास में आया और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, इतनी भीषण आग तुम्हारी इन चंद चोंच पानी से बुझेगी? चिड़िया ने जवाब दिया कि ये मैं जानती हूं कि आग बड़ी भीषण है, ये भी जानती हूं कि मेरी चंद चोंच पानी से ये आग बुझाना मुश्किल है, लेकिन ए कौवे, जब इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारा नाम आग को देखने वालों में शामिल होगा, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा। मित्रों, जल संरक्षण के बीच, जल संरक्षण के आह्वान की स्थितियों के बीच आज जब पानी की कमी है, जब आग लगी हुई है, आप यदि एक बूंद जल भी बचा सकें तो यह वैसा ही होगा जैसा उस चिड़िया का प्रयास। कोशिश कीजिए कि आपका नाम इतिहास में आग देखने वालों में न हो, पानी उजाड़ने वालों में न हो, एक बूंद ही सही पानी बचाने वालों में शामिल हो, पानी के संरक्षण करने वालों में शामिल हो। नमस्कार।

समुद्र जिसकी वस्त है, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत आप सुन रहे थे विवेक चौरसिया की वार्ता जल संरक्षण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुनहरे पल में। जिनके पास माँ है किस्मत वाले हैं। लाखों हैं दुनिया में अपने, मगर माँ की कमी भरती नहीं है। वो माँ बार बार मिलती नहीं है। कद्र उसकी उनसे पूछो जाकर जिनके पास माँ नहीं है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे मैं आज माँ के बारे में क्यों बातें कर रही हूँ। आज मातृ दिवस है, मातृ देवो भव। माँ रूपी पूंजी हमेशा हमारे साथ रहे। स्नेहमयी करुणामयी माँ को हमारा प्रणाम।

लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना राजा और रंक फिल्म से लिया गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में घर का चिराग फिल्म से लिया गीत, बोल है कैफी आज़मी के, संगीत मदन मोहन का।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इंदीवर का लिखा गीत। संगीत है राजेश रोशन का, आवाजें हैं अलका याग्निक उदित नारायण और कुमार सानू की। फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म से लिया गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल की, संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार हैं समीर।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है।

0: धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवी के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
9: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित यह केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
13: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
12: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Gudde Belur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C.

0: बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मेरिया है और मैं क्लास सेवेंथ की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मेरिया है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
5: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास फिफ्थ में पढ़ता हूँ।
0: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं, तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे अपनी मम्मा को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
1: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
1: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
0: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, तो सुनाइए।
1: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कर मुझे जगाती, जल्दी से तैयार मैं होता, उसके कारण स्कूल जा पाता, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुरार, मुझ पर गुस्सा जब है आता, दो मिनट में उड़ भी जाता, मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान, माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
0: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
1: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है, बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, दुनिया से है प्यारी माँ,
0: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियां करी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
3: दीदी, आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
0: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
3: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
0: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
3: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है, लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है, विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सॉल्व कीजिए। देखना आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
0: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
3: दीदी बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
3: हाँ दीदी।

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार, लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार, माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की आँखों के तारे हम घर के राज दुलारे हम, मीठे स्वर में रही पुकार, माँ की ममता माँ का प्यार। दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती, करे खिलौनों की भरमार, माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत, तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है, ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई, खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है, अजब गजब मम्मी का रूल, हर बातों को देती तूल, वो रोज लगाना है पानी मगर बचाना है, मम्मी का निर्देश कड़ा लगे टॉर्च और बहुत बड़ा, कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत, मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू, तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत, आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहती कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है, उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाए ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाए या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू, चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरुही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है। ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाहा नोही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फैट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितनी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहां कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है।
2: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो।
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे, और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी मम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
0: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
2: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी, मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
0: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
2: हाँ दीदी।
3: दीदी, आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: कोई नहीं।
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी ममा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों जय हिंद।
2: जय।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब प्रस्तुत है लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोकुलदास खेड़े और साथियों की गाये निमाड़ी लोकगीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन?
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं गोकुलदास खेड़े और साथियों के स्वरों में ये पारंपरिक रचना।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: गोकुलदास खेड़े और साथियों के गाए लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

आप सुन रहे थे गोकुलदास खेड़े और साथियों की गाए निमाड़ी लोकगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं फाल्गुनी पाठक। आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा पॉप सॉन्ग। स्वर है फाल्गुनी पाठक का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक के स्वर में पॉप सॉन्ग। लीजिए अब सुनिए इन्हीं के स्वर में समीर का लिखा ये पॉप सॉन्ग।

शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग रामकली। हारमोनियम पर हैं पुरुषोत्तम वलवलकर और तबले पर हैं नाना मुले।

आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग रामकली। हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम बलवलकर और तबला संगत थी नाना मूले की। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे उमरिया जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रगणकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं। तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। आज मैं हूं आपके साथ शक्ति साकले। स्वीकारें मेरा नमस्कार एक बार फिर से। और आज हम इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे नंबर बता दें। वैसे तो आप सभी को हमारे नंबर याद रहते हैं, फिर भी जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम हमारे नंबर बता रहे हैं 2710223 और 2710224। STD कोड है 0731 और हमारे इस कार्यक्रम का नाम है MH हॉटलाइन। और लेते हैं पहला फोन कॉल। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? देवकली रामतुल बाजार 12 उत्तर प्रदेश से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं मैम।
0: जी अंसारी जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, रिपेयर भी करता हूँ, बेचता भी हूँ।
0: जी अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, मूवी का नाम है साया और गो सॉन्ग के लिरिक्स हैं और साथिया उदित नारायण जी की आवाज में।
0: ओके, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में है।
1: जी जी जी।
0: आप पुराने गीत भी पसंद करते हैं या सिर्फ नए गीत ही सुनना चाहते हैं?
1: जी पुराने भी कुछ सुनते रहते हैं और नए भी सुनते हैं मैम।
0: अच्छा, नए पुराने सभी, और जो अभी के दौर में चल रहे हैं वो भी सुनते हैं आप, जो बीच के दौर वाले हैं वो भी सुनते हैं?
1: जी अरिजीत सिंह के मैम सुनते हैं, अरिजीत सिंह मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके वहाँ पर गर्मी के क्या हाल हैं?
1: जी मैम, अभी तो मान के चलिए आंधी और आई थी बारिश भी हुई थी तो गर्मी थोड़ा कम है।
0: कम है
1: जी।
0: अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: जी हमारे परिवार में अम्मी हैं, अब्बू हैं और भाई है, बहन है, दादा है, दादी भी हैं।
0: अच्छा, संयुक्त ज्वाइंट फैमिली है आपकी?
1: जी
0: जी, बहुत बढ़िया। आज के समय में ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं ऐसे परिवार, संयुक्त परिवार। जब एक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी एक साथ उठ खड़े होते हैं, ऐसा ही होता होगा ना आपके परिवार में?
1: जी जी जी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। तो लीजिए आपका पसंदीदा गीत हम आप तक पहुँचा दें। पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: शक्ति कपूर बोल रही है। शक्ति जी बोल रही।
0: हाँ जी, मैं शक्ति जी बोल रही हूँ, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते नमस्ते, अनिल भंडारे बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी भंडारे जी,
1: अरे
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? इतना तो हमें पता है कि निश्चित पुराना गीत ही आपकी पसंद है, तो वही आज भी आप सुनना चाहेंगे।
1: जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही बोलते हैं। आज मैं पुरानी फिल्म हावड़े ब्रिज का गाना सुनना चाहूंगा।
0: हाँ जी,
1: आशा भोसले की याद में, आशा भोसले की याद ऐसी कि दिल से जानी रही है क्या, रोज मेरे उनको आ जाती है, क्या करें उनको बुलाया नहीं, भूल पाते हम। इसलिए आशा भोसले का एक गाना है हावड़ा ब्रिज का,
0: हाँ हाँ
1: आइए मेरे माँ
0: हाँ जी
1: बेटिए जान लीजिए। बहुत बहुत प्यारा गीत है, मधुबाला ने गाया है। उसमें अक्षय कुमार भी बैठे हुए हैं, क्लब में गाना गा रहे हैं मधुबाला। और उस
0: मधुबाला उस
1: गाने
0: फिल्म
1: का
0: की नायिका थी। जी हाँ,
1: आसिफ कुमार शेरों से, इस टाइम आसिफ कुमार की तरफ गाना गा रही है मधुबाला।
0: हाँ
1: और ये
0: जी,
1: गाना ओपी का मधुर संगीत है, कमल उसका कमल जला जवाल जी का मधुर गीत लिखा हुआ है।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: उस जमाने में ये फिल्म सुपर हिट हिट हो गई थी। 25 से 35 हफ्ते तक के फिल्म चली थी गाने इसी के लिए। और उसके गाने इसके लोकप्रिय हो गए कि 7 साल होने के बाद भी आज गाने को अपना आनंद लेते सुनते हैं और आशा जी को याद करते हैं। बहुत प्यारा गीत है ये,
0: जी
1: आपको भी
0: बिल्कुल।
1: पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा जरूर। हमारी पसंद आपकी पसंद जरूर मिलेगी
0: हाँ
1: आज।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। भंडारे जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।

0: तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
4: हेलो नमस्ते।
3: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
4: श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से।
3: पुणे से बात कर रहे हैं?
4: हाँ जी
3: जी। अच्छा, आज आपकी क्या फरमाइश है? आपके आसपास कुछ आवाजें आ रही हैं? आप रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम? मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं?
4: मोबाइल है मेरा।
3: अच्छा, अब आवाज बंद हो गई, अभी आसपास आवाजें आ रही थी।
4: हाँ
3: जी, कौन ये फिर आने लगी? आप थोड़ा डिस्टरबेंस होता है फिर, क्या हमें आपकी आवाज बराबर नहीं मिल पाती है?
4: हाँ, मुझे परछाई फिल्म का गाना सुनना है।
3: परछाई फिल्म का?
4: हाँ।
3: कौन से बोल हैं गाने के?
4: आवाज में
3: जी बिल्कुल,
4: श्री रामचंद्र का संगीत है। नाम है ये गाना है
3: जी बिल्कुल। आप भी शायद पुराने गीतों के बहुत शौकीन हैं।
4: हाँ जी, कल 9 मई को उनके जन्म तिथि थी ना मैडम
3: जी। अच्छा।
4: कल महमूद जी से।
3: पुरानी फिल्में देखी हैं आपने?
4: नहीं देखी तो नहीं, गाने सुनते हैं।
3: अच्छा, गाने सुनते रहते हैं। क्या करते हैं आप?
4: हाँ हाँ।
3: क्या काम करते हैं आप?
4: मैं हम आश्रम में रहते हैं मैडम, आश्रम में रहते हैं।
3: आप की आवाज हमें बराबर नहीं मिल पा रही है।
4: अभी,
3: हम
4: अभी आ रही आज।
3: हाँ जी जी जी,
4: रहते हैं।
3: हाँ। अच्छा अच्छा, लीजिए हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: जी राजेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: हाँ धन्यवाद दीदी, आज मदर्स डे है और सभी को, जैसे सभी श्रोताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आकाशवाणी परिवार को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले जो 22 मई का स्थापना दिवस है आकाशवाणी का, उसकी भी सभी को श्रोताओं को शुभकामना देता हूँ। सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि उस दिन आकाशवाणी पर आवे और हमें सबका गौरव बढ़ावे, मतलब सभी श्रोताओं इसकी धूमधाम से मनाए।
0: हाँ जी बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: हम आने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसे लगातार 3 साल से तो हम आ ही रहे हैं वहाँ पर, और अच्छे भी कोशिश है हमारी। और आज हमारा गीत है ये कालीचरण पिक्चर का, अपने 1/2, 2/4 ये गीत है।
0: हाँ जी
1: मदर्स डे के ऊपर ये वाला गीत सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे दोस्त है मंसूरी परिवार पालदा नाका से और लोकेल वर्मा उज्जैन से, ये भी सुन रहा है इस गीत को।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है राजू जी?
1: परिवार में सभी है, बच्चे हैं और पत्नी है, सभी है, जैसे माता पिता तो शांत हो चुके हैं, मेरे भाई है, भाभी है, सब है, बहन है।
0: अच्छा।
1: और मेरा प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है और साथ में करीब 40-45 वर्षों से मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ।
0: और प्रिंटिंग प्रेस का काम है तो ये कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये काम?
1: ये मेरे को हो गए दीदी 26 साल हो गए मुझे इस कार्य में।
0: अच्छा।
1: 2001 से मैं ये कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो 40-45 वर्ष हो चुके हैं, 40 वर्ष, लेकिन मैंने मेरा खुद का कार्य 26 वर्षों से कर रहा हूँ।
0: अच्छा, पहले के समय की जो प्रिंटिंग प्रेस थी यानी जो मशीनें थी, और अब के समय में क्या अंतर आया है?
1: अब के समय में ये अंतर आया है दीदी कि आजकल बहुत फुर्ती से काम हो जाता है। पहले जो 10 घंटे में काम होता था वो आज 1 घंटे में हो जाता है, ये मतलब इसमें फर्क आया है। और जैसे बहुरंगी प्रिंटिंग हो जाती है हाथों हाथ, पहले ऐसा नहीं होता था। बहुरंगी प्रिंटिंग के लिए 5 बार छापना पड़ता था एक ही कागज को। और अब क्या है कि मशीन ऐसी आ गई है कि आपको 4 कलर प्रिंटिंग हाथों हाथ हो जाता है एक ही बार में। जी, और फ्लेक्स में फोटो छपाना हो, काय में भी छपाना हो, तो हाथों हाथ मोबाइल से अपन उसको हाथों हाथ छप जाते हैं, हूबहू फोटो छप जाता है। और पहले इसके लिए क्या था कि ब्लॉक बनवाने पड़ते थे, जो ब्लॉक बन के आते थे जब जाके अपन अपना छपता था काम, और अब ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सा इसमें मतलब वो आ गया है, वह फर्क बहुत आ गया है इसमें। जी
0: और हाँ जी राजेश जी, हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन कट गया है और राजेश जी की पसंद का गीत हमने उन तक पहुंचाया है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सुगंध क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
11: हेलो नमस्ते मैडम।
10: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
11: राजेश दलवी बोल रहा था महाकाल की नगरी उज्जैन से। मैडम
10: जी महाकाल की नगरी उज्जैन से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपसे आज मेरी पहली बार बात हो रही है।
11: यस मैडम।
10: हाँ जी, इसके पहले भी आपने कॉल किया है इस प्रोग्राम में?
11: हाँ मैडम मैंने किया है कॉल कहीं।
10: अच्छा अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
11: मैं दादी माँ पिक्चर का गीत सुना देता हूँ, आज मदर डे है तो उसको नहीं देखा हमने कभी, भगवान की सूरत क्या होगी।
10: बहुत प्यारा गीत है,

0: आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम, माँ के बारे में क्या कहें, कोई शब्द नहीं है हमारे पास।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: क्या
0: फिर भी
1: अगर
0: कुछ ऐसी स्मृति, कुछ ऐसी याद, या फिर कुछ ऐसा मतलब जो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है?
1: मैडम कोई शब्द नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, अगर 10 जन्म भी ले तो कम है।
0: हाँ जी, हमारी क्या कहना चाहिए,
1: माँ है ही ऐसी
0: सबसे
1: है
0: बड़ी पूंजी है माँ। माता पिता
1: बस,
0: हमारी सबसे बड़ी पूंजी
1: बिल्कुल
0: होते हैं,
1: बिल्कुल
0: सहेज कर हमें जीवन भर रखने की कोशिश करनी चाहिए,
1: बिल्कुल सर,
0: और उनका प्यार, उनका जो हमारे प्रति है, पूरी कोशिश करना चाहिए। हम उनका ऋण तो चुका नहीं सकते, लेकिन हाँ वो स्नेह
1: बिल्कुल
0: हम उन्हें समर्पित कर सकते हैं, उनका प्रेम, वही प्रेम हम उन्हें दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: आपने
1: बात
0: गीत भी
1: की।
0: बहुत प्यारा सुना है, चुना है। और
1: बिल्कुल
0: परिवार में कौन कौन है आपके?
1: वाइफ है और एक बेटी है, जो बेटी इंदौर में ही है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: और साथ में मार्केटिंग भी करता हूँ दिन दिन
0: उज्जैन
1: में।
0: में ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम,
0: कितने समय से जुड़े हैं आप आकाशवाणी के साथ?
1: मैंने देखा जाए तो मेरा थोड़ा ऐसा रहा कि आकाशवाणी से काफी लगाव रहा है। मैं 27 साल उदयपुर रहा हूँ, तो आकाशवाणी में एक चिक्कू श्रोता के नाम से प्रसिद्ध था,
0: अच्छा,
1: और उज्जैन आया हूँ तो मेरी वाइफ को बेस्ट अवार्ड मिला गया श्रोता का।
0: अरे वाह, क्या बात है। हाँ
1: और जब
0: हाँ
1: से इंदौर पकड़ा है तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती अब आकाशवाणी इंदौर।
0: तो आप कैसे समय निकालते हैं ये सुनने के लिए?
1: मैडम मोबाइल ऐप पे भी है, और साथ में हर कमरे में 3 रेडियो लगा रखे हैं।
0: अच्छा, नहीं जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो उतने
1: मैडम
0: समय
1: मेरा
0: नहीं
1: काम
0: सुन पाते होंगे।
1: नहीं, मेरा काम ऐसा है कि मैडम कि मैं मॉर्निंग में 12 बजे तक घर पे रहता हूँ,
0: अच्छा,
1: उसके बाद मैं ऑफिस निकलता हूँ, उसके बाद फिर शाम को घर पे ही काम रहता है सारा नाइट में,
0: जी
1: तो रेडियो चलता रहता है, सुनते रहते हैं।
0: बढ़िया, घर में सभी लोग सुनते होंगे फिर।
1: बिल्कुल मैडम, एक
0: चलिए,
1: रेडियो ऐसा साथ है जो पूरा निभाता है।
0: हाँ सही बात है। और गीत सुनते सुनते कब समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता, हमारे सारे काम भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: म्यूजिक
1: बिल्कुल
0: थेरेपी से मतलब जैसे काम होते हैं ना, समझना चाहिए वैसे ही बहुत अच्छे काम हो जाते हैं।
1: बस बस, वो धुन सुनते सुनते कब लैपटॉप पे कब काम हो जाता मालूम नहीं पड़ता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो एमएच हॉटलाइन, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं शिखा चोरे बोल रही हूँ भोपाल से। धन्यवाद
0: जी शिखा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं पंख होते तो उड़ जाती, मैं लता मंगेशकर जी का ये सॉन्ग है
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल,
1: वाला।
0: पंख होते तो उड़ाती मैं, कहाँ इंदौर में आ जाते फिर तो आप।
1: हाँ, इंदौर ही आ जाते
0: जी
1: थे।
0: अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: मैं अभी तो यहाँ भोपाल में आई हूँ, अपने मम्मी
0: अच्छा,
1: पापा,
0: आज
1: मेरा
0: मदर्स
1: एक
0: डे
1: बेटा
0: है।
1: है 4 साल का। हाँ,
0: अच्छा
1: तो वो
0: अच्छा
1: गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के घर आया है। रियांश,
0: अरे वाह, क्या क्या नाम है बेटे का? रियांश, कौन सी क्लास में है?
1: वो अभी LKG में है।
0: अच्छा, और आप, आज मदर्स डे है तो आज आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी माँ के लिए?
1: हाँ, मम्मी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मम्मी बहुत मेरी अच्छी है। मेरी मम्मी का थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बस यही कहना चाहूंगी कि अब सभी लोगों की अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखिए। जितनी कोशिश हो सके सब अपनी मम्मी, जितना हो सके अपनी मम्मी पापा के साथ रहिए।
0: सही बात है, बचपन में हमें माँ ने बहुत संभाला है और
1: हाँ, अब
0: आज
1: अपनी
0: हम,
1: बारी है कि
0: हमारी
1: अब
0: बारी है।
1: अपन।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम उनको उतना ही प्रेम स्नेह दुलार, माँ तो करुणामयी होती हैं। और ये
1: हाँ
0: बात बिल्कुल सही कहा, हर दिन माँ का होता है लेकिन
1: हर
0: आज
1: दिन माँ
0: हमने
1: का
0: एक
1: होता है, इस
0: दिन विशेष तौर पे मना
1: फैक्ट
0: रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है। चलिए शिखा
1: अभी।
0: जी, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने
1: जी
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, लगता है फोन कट चुका है और श्रोता का हमसे संपर्क टूट चुका है। हम लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो, अभी श्रोता का हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक हम अपनी ही पसंद का एक गीत आपको सुनवा देते हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: लीजिए, श्रोता का हमसे संपर्क हो गया। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, अनोखी सिंह।
0: अनोखी सिंह जी, आपके फोन हमें अक्सर आते ही रहते हैं। क्या
1: हाँ
0: करते हैं
1: सर जी,
0: आप?
1: ठीक है, नॉर्मल है।
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप अनोखे सिंह जी?
1: बाग जिला धार
0: जिला धार, वाघ जी।
1: बाग।
0: आपके फोन बहुत लगते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप और आपके समान उन सभी श्रोताओं से जो हमें अक्सर लगातार फोन कॉल करते हैं, कि कृपया 3 महीने का, और नहीं तो कम से कम 2 महीने का अंतराल बनाइए और फिर हमें कॉल कीजिए, ताकि जो नए श्रोता हैं वो हमसे जुड़ सकें। अनोखे सिंह जी, ये मेरी रिक्वेस्ट आप मानेंगे ना?
1: नहीं तो सर जी, देखो फिल्म है जय चित्तो,
0: अच्छा,
1: गाना पहले तो आप गाना।
0: हाँ जी, बिल्कुल, जय चित्तोड़। ठीक
1: हाँ
0: है,
1: पवन, नहीं
0: आपने हमारी बातों को घुमा दिया है वैसे।
1: घुमाया नहीं सर जी, अभी
0: अच्छा,
1: इसी हफ्ते में कम से कम चार चार बार फोन आ गए, भंडारी जी, ये
0: हाँ
1: वासुदा,
0: जी, हम
1: अरविंद
0: सभी,
1: जी, हमने सबकी लिस्ट बना
0: जी
1: रखी है
0: हम सभी श्रोताओं से बोल रहे हैं
1: और
0: जो
1: आप बड़े अच्छे से
0: अक्सर,
1: बात करते हो उनसे, ऐसी
0: नहीं, ऐसी बात नहीं, हम आपसे भी देखिए ना
1: नहीं, हमने
0: कितने
1: लिस्ट
0: अच्छे से
1: बना
0: बात कर
1: रखी है
0: रहे
1: सर
0: हैं।
1: जी,
0: जी,
1: किसकी
0: बिल्कुल
1: कितनी जी हफ्ते में बात हो रही है,
0: जी,
1: और
0: हम
1: हमसे बात करने का टाइम आता है तो आप ऐसे हमारी फोन कनेक्ट करके हमारी हत्या कर दी जाती है,
0: नहीं
1: बोलने
0: नहीं
1: नहीं दिया जाए सर
0: नहीं नहीं
1: जी। ऐसा
0: ऐसी बात नहीं
1: होता
0: है।
1: है, कल भी हमारे को लाइन पे लगा रखा, क्रांति का हमारा गाना रखा, वो
0: आज आज आपको
1: डिस्कनेक्ट कर दिया आपने।
0: अनोखी सिंह जी, जो बीत गई आप उसको छोड़ दीजिए, अभी का सोचिए। अभी
1: अभी का
0: आपका
1: तो हमें कह
0: कॉल,
1: रहे हैं कि जय चित्तौड़ का गाना होना चाहिए, पवन भेखते उड़ने वाले
0: जी
1: घोड़े,
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल,
1: हमारी अपनी सेना उनको समर्पित है, जो महाराणा प्रताप के समर्पित है, उनको सभी को समर्पित है ये सर जी। और मातृ दिवस पे ये कहेंगे कि जन्म देने वाला और परवरिश करने वाले को कल्पना नहीं चाहिए कि मैंने इसकी परवरिश करी या जन्म दिया इसको।
0: इसके
1: और बोलो आप
0: अलावा
1: क्या
0: कोई
1: बोलते,
0: गीत है आपकी पसंद का?
1: यही है, नहीं तो फिर हमारा एक क्रांति का है आपके बरर।
0: आपको
1: सर
0: मिल
1: जी
0: गया है ओ पवन वेग से गीत, मिल गया है जय चित्तोड़
1: हाँ,
0: फिल्म का, हम आप
1: आपका
0: तक
1: धन्यवाद
0: पहुंचा रहे
1: सर
0: हैं।
1: जी, धन्यवाद
0: बिल्कुल जी, ओके, फोन करने
1: सर
0: के लिए
1: जी, धन्यवाद,
0: धन्यवाद। आपका गीत ये
1: धन्यवाद।
0: पहुंच रहा है।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ,
0: कहाँ से?
1: सागर से। जी
0: सागर से। आज आपने पहली बार कॉल लगाया है? इसके पहले भी आप कॉल कर चुकी हैं यहाँ पर?
1: कॉल करते रहते हैं, मतलब जब भी टाइम मिलता है, कुछ दिन बाद ऐसे बीच बीच में कभी कभी कर लेते हैं।
0: कर लेते हैं तो लगता है।
1: जी लग जाता है,
0: अरे
1: कभी कभी
0: वाह।
1: नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, वरना लग जाता है कॉल।
0: आज आप कौन सा गीत
1: जी,
0: सुनना चाहती हैं?
1: मूवी का नाम है सनम रे, इसी का टाइटल ट्रैक सुनना है, और डेडिकेट मेरी सिस्टर रानू दीदी को रात को रहेगा।
0: जी धन्यवाद, शुक्रिया। और कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई हैं, मैं हूँ, और मेरी बहन भी है। मैं
0: क्या करती हैं आप?
1: स्टडी फाइनल कंप्लीट हो गया मेरा।
0: अरे वाह, क्या बात है। और
1: जी,
0: आगे क्या करना चाहेंगी आप भविष्य में? कुछ सोचा है आपने?
1: अभी आगे का नहीं सोचा मैंने, करती
0: परिवार
1: रहती हूँ
0: वालों ने
1: ऐसी।
0: कुछ सोचा होगा आपके लिए कि हम बच्ची को ये करवाएंगे आगे?
1: नहीं, मैं मतलब ऐसा है कि मम्मी पापा तो ये बोलते हैं, तो मैं जो करना है वो कर सकती हूँ।
0: अच्छा, तो आपको तो अभी
1: जी
0: तक सोच लेना चाहिए था ना।
1: बिल्कुल, सोचेंगे।
0: कब सोचेंगे आप? आज ही सोचिएगा बिल्कुल। और जब अगली बार कॉल करेंगी ना आप, लेकिन आप कब करेंगी? 3 महीने बाद ना, 2 से 3 महीने के
1: नहीं, अब
0: बाद।
1: मेरा कुछ ऐसा पता नहीं रहता मैं कब
0: अच्छा
1: कर दूं,
0: अच्छा
1: क्योंकि मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ कॉल। जी
0: हाँ। और अपनी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? आज मदर्स डे है।
1: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: हाँ सही कहा, माँ शब्द में ही प्रेम भरा हुआ है। माँ सभी की बहुत अच्छी होती हैं, और
1: जी,
0: खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है। सही
1: और
0: कहा
1: मेरी
0: ना?
1: मम्मी के लिए हैप्पी मदर्स डे बोल।
0: हाँ जी
1: जी
0: बिल्कुल। हम आपका ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आप अपना नाम बताएंगी हमें?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही
0: नंदिनी
1: हूँ।
0: जी, फोन करने के लिए
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, नमस्ते।

0: श्रोताओं, इसी के साथ इस कार्यक्रम से अब अनुमति चाहती हूं मैं शक्ति साकल्ली। दीजिए अनुमति, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, MH हॉटलाइन।

आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाश

0: वाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हमें बताएंगे टेलीफोन नंबर 2660902 के माध्यम से। भोपाल का एसटीडी कोड आप जानते हैं 0755। तो बताइए अपनी फरमाइश और आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीतों का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो।
3: हेलो नमस्ते
2: जी। नमस्कार।
3: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
2: जी खान साहब कैसे हैं?
3: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खैरियत में है, बस गर्मी थोड़ी तेज है फिलहाल तो।
2: जी अच्छी बात है, खैरियत से होना ही चाहिए। अपन ही यदि ठीक ना हो तो आसपास की चीजें और ज्यादा दिक्कत देने लगती हैं।
3: हाँ सही है।
2: आज के इस कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं, बताइए कौन से गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की।
3: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
2: जी
3: इसका गीत है लता जी की आवाज में, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां।

0: हेलो
1: नमस्कार दीदी।
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम की बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। कौन दीदी बोल रही हैं?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
1: जी, अमिता जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: झुक झुक गया आसमान तुमसे मिले नजर की मेरी होश उड़ गए।
0: जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप इस गीत की फरमाइश पहले भी कर चुके हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, हालचाल पता लगते हैं तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल मैम
0: जी गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
0: अच्छा, और गीत के बोल?
1: गीत के बोल मतलब ये टाइटल सॉन्ग सुनना है मैम।

0: आप कैसे हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या चल रहा था अभी घर का काम काज?
0: जी मैम, वही भोजन।
1: बिल्कुल सही बात है, ये समय भी ऐसा ही होता है। और भोजन एक ऐसी चीज़ है जो सुबह शाम की तो कम से कम एक व्यस्तता होती ही है, कई बार वो घर में 3 बार की व्यस्तता भी हो जाती है।
0: जी मैम, नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ, उसके बाद भोजन की तैयारी, फिर 4 बजे फिर मेरे
1: बिल्कुल
0: पापा जी हार्ट पेशेंट हैं,
1: जी।
0: शुगर पेशेंट, उनको बार बार देना पड़ता है
1: हाँ,
0: सुबह।
1: नहीं सही बात है। और बल्कि डॉक्टर्स कहते भी यही हैं कि एक बार में एक साथ पूरा भोजन
0: जी
1: लेने के बजाय यदि हम छोटे छोटे मील्स लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे, तो वो पचने में भी आसानी होगी, शरीर को लगेगा भी और ज़्यादा हितकारी होगा। पर बस
0: जी
1: वही है कि सबके अपने पैटर्न होते हैं और
0: जी
1: उसके हिसाब से फिर काम चलता है। तो बताएं कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जा सकती है?
0: जी मैम, मूवी का नाम नहीं बता पाऊंगी।
1: चलिए गीत के बोल बता दीजिए।
0: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बोले बदल दे
1: बिल्कुल
0: बस, घर की
1: बिल्कुल
0: बदल दे
1: बिल्कुल।
0: सबके।
1: आसपास कहीं पूजा पाठ चल रहा है?
0: जी, घर में ही।
1: इतनी अच्छी शंख ध्वनि के साथ आपके खूबसूरत से गीत को हम पहुंचाते हैं आप तक। फिल्म राजा और रंक से।

0: हेलो, फोन करें
1: हेलो
0: गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: मैं ग्राम सगरा, जिला पन्ना से अंजना प्रजापति बात कर रही हूँ।
0: जी। अंजना, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी मैम, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है तो
0: बहुत
1: आज
0: दिनों
1: बहुत ही
0: बाद
1: अच्छा लग रहा।
0: ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिनों में बात हो तो अच्छा लगता है। क्या
1: जी
0: चल रहा
1: मैम, जी
0: है बाकी?
1: मैम मुझे गाना सुनवा दीजिए। मूवी का नाम है विजयपथ, उसमें एक गीत है राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: विजय पथ का गीत आप सुनना चाहती हैं और हम पूछ रहे थे कि इन दिनों क्या चल रहा है।
1: मैम इन दिनों कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
0: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी हैं, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैं नमस्कार, मैं हूँ रामबाबू मालवी, बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: जी मालवी जी, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आपकी
1: जी
0: फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आज सुनना चाहेंगे हम रंग मूवी का, कोई सा भी सुनवा दीजिए आप।
0: रंग मूवी का?
1: हाँ
0: जी, फिर भी क्या पसंद है इस मूवी में?

0: कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
1: उसमें गाना वो अच्छा है, तुझे देखे मेरी आके, इस प्रकार से गाना है वो
0: जी
1: अच्छा है।
0: बिल्कुल, तो आपकी
1: धन्यवाद।
0: पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी। नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: अनिल बामनिया लाभेर इंदौर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं आप अनिल जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी अच्छे हैं।
1: तो आज मुझे एक गीत सुनना है, जनता वलदार।
0: इसका कौन सा गीत है?

0: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
1: अनिल जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है
0: और मैं एक और आपसे निवेदन करना
1: जी,
0: चाहूंगा,
1: बताइएगा।
0: आप चिट्ठी के जो प्रोग्राम है मैडम, वो अधिक से अधिक शामिल करें और पत्र प्रोग्राम प्रसारित होता था उसके पुनः शुरू किया जावे।
1: कौन सा प्रोग्राम?
0: आपका पत्र,
1: आपका पत्र, बिल्कुल
0: हाँ पहले आया करता, पहले आता था ये
1: जी। कोविड के पहले तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा है, उसके बाद के बदलाव में ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था।
0: हाँ
1: तो आपकी ये सुझाव और आपकी ये फरमाइश पहुंच गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा
0: बिल्कुल
1: यकीनन आप
0: बिल्कुल,
1: तक पहुंचेगा।
0: थैंक यू मैडम,
1: और
0: ओके।
1: जो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप, फरमाइश की, तो बस उसके लिए इतनी सी ही गुजारिश है कि जितने ज्यादा श्रोता जुड़ेंगे उसमें पत्र लिखने में, उतने ज्यादा पत्र शामिल होंगे। यदि एक ही व्यक्ति 100, 150, 500 पत्र डाल देगा तो पत्रों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन शामिल होने वाले पत्रों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी,
0: हाँ जी जी
1: है ना
0: नहीं सर, तो आपके ये
1: जी?
0: आपका फरमाइश कार्यक्रम जो आता है उसमें तो
1: जी
0: कई पत्र आते हैं
1: जी जी बिल्कुल
0: और मैं भी भेजता रहता हूँ।
1: बिल्कुल, और शामिल भी होते रहते हैं
0: हाँ हाँ होते रहते हैं
1: जी।
0: इसलिए,
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगे गीत सुने कार्यक्रम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी दीदी जी, दी, नमस्कार। मैं छतरपुर बसारी गेट से राकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है हमारे गोदाम पर,
0: हाँ, तो
1: और
0: बढ़िया
1: उसी में
0: छाया
1: बैठे
0: होती है।
1: हुए।
0: गर्मी का मजा तो हम लेंगे, तभी बारिश की आमद होगी, तो इसलिए उस आनंद को तो
1: जी
0: लेते रहिए इस उम्मीद के साथ कि
1: जी
0: अच्छी
1: दीदी
0: बारिश
1: जी,
0: होगी। तो
1: मैं मुझे ध्यान आ रहा है कि आज शायद अनीता बोल रही हूँ, अमिता जी।
0: अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ मैं।
1: जी
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: थोड़ा थोड़ा ध्यान, मैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ,
0: जी
1: जबकि 1976 से जब से मैंने आकाशवाणी सुनना शुरू की है, मतलब
0: जी
1: रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से
0: जी
1: मैं भोपाल से जुड़ा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ाव आगे भी बरसों बरस बना रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। और अभी आपकी कौन सी पसंद पूरी की जा सकती है ये बताइएगा।
1: पसंद दीदी जी, मौसम के हिसाब से तो गर्मी के हिसाब से गिरफ्तार का आ रहा है, और कबीर रेडियो श्रोता संघ के नाम से हैं हम, तो
0: जी,
1: कबीर रेडियो के नाम से है, तो एक गीत आ रहा है 10 नंबरी का।
0: दस
1: अब
0: नंबरी का
1: तीन
0: कौन सा
1: जगह है
0: गीत
1: और तीन में से एक गीत हमको चुनना है। कहें कबीर सुनो भाई साधु।
0: आपने
1: आप
0: एक तीसरी पसंद की भी बात की, तो वो भी बता दीजिए।
1: तीसरा तीसरा वो है, वो शादी ब्याह चल रहा है ना, तीन तीन ऑप्शन थे हमारे पास।
0: हम जरूर पूरा करेंगे, आप ही इन तीन में से एक चुन लें तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
1: सोच रहे हैं कि कबीर कबीर वाला सुना दीजिए 10 नंबर का, क्योंकि ये गीत
0: बिल्कुल,
1: बहुत कम बचता है।
0: तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आनंद
1: जी
0: लीजिएगा।
1: नमस्कार दीदी जी।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ हालांकि दो दिन पहले हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवी के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव इस दौरान अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म नसीब से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुश्तबा। अगले श्रोता हैं महनगर महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता मलकापुर महाराष्ट्र से हैं, शत्रुघ्न वाल्मीक, नीना जी, स्वप्न।

0: और अजय खिरोड़कर, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

किशोर कुमार और एनेट पिंटो के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सत्ते पे सत्ता से। ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है दिल्ली शहर से। श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारे श्रोता भाटापारा दतरिंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद कुमार वर्मा। अगले श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से हैं, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: तीनों कॉलेज में
9: डोंट वरी,
8: फीस तो देखो।
10: क्या हाल है, क्या हुआ?
9: फीस की टेंशन।
10: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 11वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप बीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर

0: मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की है, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ।
0: पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
4: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
2: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
5: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
2: वो
5: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
2: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है।
0: और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
6: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
7: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
2: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
7: जी आपने मुझे पहचाना?
2: नागा ढील टॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण,

0: गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
1: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
0: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
1: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
0: अच्छा,
1: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
0: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
2: ये महाशय कौन है? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
0: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
2: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
0: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
2: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
1: भोजन बहुत स्वादिष्ट था
0: जी, वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
1: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
0: जी धन्यवाद जी, आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
1: हाँ,
3: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
0: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
1: जी शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए?
1: जी बिल्कुल,
0: वापिस लौट कर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं।
1: जी जरूर।
0: आइए।
1: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
0: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
1: जी बिल्कुल।
0: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
1: भाई साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ,
3: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
1: और वहीं ससुराल भी है।
0: जी
1: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1,000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
0: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
1: शुभरात्रि।
0: अरे उमापति जी, सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
1: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
0: अच्छा
1: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
0: अरे नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
1: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे।
0: जी
1: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
0: अच्छा
1: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
0: अरे
1: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
0: जी
1: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
0: अच्छा अच्छा।
1: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं, समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए। आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
3: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे। वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूं, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं।
0: कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
4: इसकी बातों ने तो मुझे हंसमंजस में डाल दिया है। एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते। ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं। इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
5: अरे अजी सुनती हो?
4: अच्छा उमापति जी, आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
6: क्यों, क्या करोगे?
4: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
6: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
4: वो
6: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
4: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
6: तो कह दो इस समय घर में रुपए नहीं है।
4: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूं, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते। कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
6: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते।
4: अब
6: ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
7: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
4: सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
8: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
6: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी। लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
4: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं। मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
3: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ। दरअसल वो बात यह है कि, और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास 1 का किराया भी नहीं है।

0: मैं तो आ रहा है कि टका सा जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी।
1: बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। एक हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्म पत्नी ने कहा था वही सच था।
0: इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नखत नारायण के दर्शन होते हैं।
2: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
0: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
3: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
0: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
3: जी मुझे स्वीकार है।
0: ठीक है। मुनीम जी।
4: जी।
0: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
2: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
0: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
2: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
3: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
0: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूं और ये भी जानता हूं कि वो यहां रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। हाँ, इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
3: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
0: यहां तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं ये भी कौन जाने। रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया।

0: नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं।
1: सुनो बेटा सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
2: पंडित जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
1: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो। लो ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ। जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
2: नीम जी मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा, घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
0: अरे मुनीम जी ये लड़का क्या कह रहा था, कुछ कहकर गया है क्या?
1: हाँ वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है, मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
0: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, ये अच्छा ही हुआ। चलो मुझसे ना सही किसी और से ही सही, मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया मनुष्यता सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही है पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
3: पोस्टमैन आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे ये तो उमापति ने भेजा है। अरे सुनती हो, ये देखो उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे हैं और क्षमा लिखा है।
4: अच्छा इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय,
5: रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कड़। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवी के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर दोपहर के 1 बजे है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, सखियां सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए 8 से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है।

से ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बनें, तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पहचान बन जाए, हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए। एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए। सड़क पर सावधानी घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे, तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है, वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

0: कोई पकड़ ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ फेरे।
2: ममता की छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्से ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हाँ बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती हैं। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम COVID-19 महामारी के आंकड़े देखें तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थी। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया ताकि वे दूसरों की जान बचा सके। यह केवल एक नौकरी नहीं थी बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं, फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि भविष्य में नर्सों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार और समाज दोनों मिलकर नर्सों के कार्यस्थल की स्थिति और सुरक्षा को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि नर्सें केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवक है। बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूँ तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नज़र से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हर वक्त भगवान से हमारी खुशियाँ ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया? लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों पर अपनी माँ के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए।

किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में इम्यून सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफ़ी लाभकारी होती है। बहुत ज़्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयाँ, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज़्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, 1 चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 ग्लास। सभी चीज़ों को एक कटोरे में अच्छे से मिला लें। अब इसे एक ग्लास में सर्व करें, जिसमें कि आप कुछ बर्फ के आइस क्यूब्स डाल दें। ठंडा ठंडा पीने पर काफ़ी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। 1 नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ़ डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं, इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रगत रूप में हो रही यूथ बताए कि कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या सरकार करे, कहाँ प्रविधान करे, बजट में उसके लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो ये बजट को एक कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो एक काम होता था उससे निकाल के यूथ से नए इनोवेटिव आइडिया लेकर के और बजट को विकसित

0: आप सुन रहे हैं
1: कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनसे ये गजल।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रगत रूप में हो रही यूथ बताए कि कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या सरकार करे, कहां प्रविधान करे, बजट में उसके लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो ये बजट को एक कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो एक काम होता था उससे निकाल के यूथ से नए इनोवेटिव आइडिया लेकर के और बजट को विकसित

0: की होगी कमाल, विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल के आवाजों में है। फिल्म का नाम आर आर आर।

सुनिधि चौहान की आवाज में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव 1,059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तोल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरपुनिया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के से सेवाओं की जानकारी ली और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु मुद्दों कवनवरुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.

0: आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेज

0: तालिबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। होती है बड़ी प्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ, सुख सारे हमको देकर दुख सारे हर लेती माँ, सदा प्यार हमको देती है, ममता का तो सागर है माँ। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत माँ पर लिखी कविता से क्यों की है। हाँ बच्चों, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो बच्चों, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बहुत उत्साहित ही होंगे। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को यह मदर्स डे मनाया जाता है।

0: बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मीरिया है और मैं क्लास सेवेंथ की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मीरिया है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
5: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास फिफ्थ में पढ़ता हूँ।
0: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं, तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे अपनी मम्मा को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
1: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
1: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
0: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, तो सुनाइए।
1: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कर मुझे जगाती, जल्दी से तैयार में होता, उसके कारण स्कूल जा पाता, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुलार, मुझ पर गुस्सा जब है आता, दो मिनट में उड़ भी जाता, मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान, माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
0: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
1: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है, बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, दुनिया से है प्यारी माँ,
0: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियां करी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
3: दीदी, आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
0: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
3: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
0: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
3: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है। लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है। विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सॉल्व कीजिए, देखना आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
0: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
3: दीदी बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
3: हाँ दीदी।

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार, लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम। मीठे स्वर में रही पुकार, माँ की ममता माँ का प्यार, दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती, करे खिलौनों की भरमार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत, तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है, ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई। खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है, अजब गजब मम्मी का रूल, हर बातों को देती तूल। पोछा रोज लगाना है पानी मगर बचाना है, मम्मी का निर्देश कड़ा लगे टॉर्च और बहुत बड़ा। कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत, मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू, तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत, आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है, उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाएं ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाएं या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू, चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरुही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है। ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाहा नोही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फेट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितनी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहां कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है।
2: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी मम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
0: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
2: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी, मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
0: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
2: हाँ दीदी।
3: दीदी, आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: कोई नहीं,
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है, है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। डगर विकास की ये कार्यक्रम रात 8:15 होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे रात 8:30 और रात 9:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर पुनः सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयती
1: और मैं ईरा
0: स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम मना रहे हैं आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्षों का ये गौरवशाली सफर। 8 जून 2036 को शुरू हुई ये यात्रा आज देश दुनिया तक अपनी पहचान बना चुकी है। इसी उपलक्ष्य में आकाशवाणी इंदौर द्वारा 7 मई 2026 को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
1: कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता, कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रीति छाटीदार और कार्यक्रम अधिकारी असीम कैथवास उपस्थित थे। इन सभी अतिथियों का स्वागत पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन शाला की विभाग अध्यक्ष डॉ. सोनाली नरगुंदे ने सहृदय किया और उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा,
2: आप सभी का अभिनंदन। और चूंकि अभी जो परीक्षा का दौर चल रहा है, उसमें परीक्षा चल रही है और परीक्षाओं में भी कार्यक्रम करना, ये चुनौती सिर्फ पत्रकारिता और जनसंचार अध्ययन शाला ले सकती है, बाकी किसी में भी दम नहीं है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि एग्जाम के दौरान लोग जरा भी बात नहीं करते हैं, वो बहुत एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा विषय ऐसा है कि हम माध्यमों के साथ चलते हैं, माध्यमों के साथ जीते हैं, तो हम इस समय पर भी क्या किसी भी समय पर मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कार्य ही 24/7 है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ गई होगी अभी तक जितने भी समय में आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, कि किसी भी समय पर कुछ भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है कि इस गर्मी में परीक्षा देने के बाद भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ आकाशवाणी इंदौर के हमारे सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इतनी अच्छी रूपरेखा हमारे लिए रची और यहाँ से शुरुआत हुई है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष का जो कार्यक्रम पूरे तय हुए हैं, उसमें हमारा चयन हुआ और हमसे ये शुरुआत की जा रही है कि हम इस कार्यक्रम के सहभागी बन रहे हैं। जैसा आपको बताया कि एक प्रतियोगिता रहने वाली है, 3 मिनट का आपको बोलना है, जिसमें भारतीय संस्कृति के विविध विषयों को शामिल किया है, जिसमें मालवा के विविध विषयों को शामिल किया है। आपको 3 मिनट में अपनी प्रस्तुति करनी है और जो विजेता रहेगा वो इस प्रतियोगिता में आरजे रहेगा, युववाणी का एक दिन का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1984 में हुई और पहली बैच हमारी यहाँ से 1984 में पास होकर के निकली। उसमें निकले हुए पत्रकारों ने देश में अपना डंका बजाया है और उसके बाद जितनी भी पत्रकारों की बैच यहाँ से निकलती गई है प्रतिवर्ष, वो सभी विविध संस्थानों में काम करते रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि प्रारंभिक रूप से हमारा विभाग एक कार्यक्रम के साथ, एक पाठ्यक्रम के साथ शुरू हुआ था, जो सिर्फ बीजे के नाम से था, बीजे एमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एक वर्षीय पाठ्यक्रम जो हमारा शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने 2005 में 3 वर्षीय बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन शुरू किया, जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 के बाद में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 4 वर्ष का हो गया है। उसके साथ 2000 में हमने मास्टर्स शुरू किया था, जिसकी पहली बैच से मैं यहाँ से पास आउट हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं इस विभाग से मास्टर्स किया। इसी सभागार में हम लोगों को ऐसा सभागार जो आपको पढ़ने को मिला है, वैसा हमारे पास भवन नहीं था। जब बीए शुरू हुआ तब हमारे यहाँ भवन की परिकल्पना बनी और ये बिल्डिंग हमारी 2008 से है। 2008 के बाद से इस सभागार में देश के सभी अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे पत्रकार, अच्छे सुधारक, अच्छे संचारक, अच्छे कार्यकर्ता यहाँ पर अपना उद्बोधन दे चुके हैं और ये इस सभागार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। अब मैं बात करती हूँ, हमारे विभाग में पीएचडी भी होती है, हम शोध भी करते हैं। यहाँ से 26 लोगों ने शोध कर लिया है विविध विषयों पर और बहुत अलग अलग विषय हैं सभी के शोध करने के। चूंकि जनसंचार पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग विषयों के बारे में विचार नहीं करते हैं, कई बार करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रारंभिक उद्बोधन हमेशा रहता है। कार्यक्रम की प्रस्तावना देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी। अब मैं बात करती हूँ रेडियो की। मेरा बचपन आकाशवाणी से शुरू हुआ, मैं जवान आकाशवाणी के साथ हुई, मैं बूढ़ी आकाशवाणी के साथ हो रही हूँ। अब ये उम्र की बात चल रही है, लेकिन इसी बात को मैं उस बात से कहना चाहती हूँ कि आज लता जी का गाना है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो वो जो आकाशवाणी है, वो जो रेडियो है, वो आपके कान में जो बजता रहा है, आपको एक अलग जीवन की चैतन्यता देता रहा है, वो कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता है, वो अमर है, अमर रहेगा। इसका कारण मैं बताती हूँ कि बहुत सारे माध्यम आए। सर्वप्रथम अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमारे पास पर्चों से शुरुआत हुई थी, फिर हम समाचार पत्रों में आए, समाचार पत्रों के बाद रेडियो की, हम रेडियो का दौर देखते हैं, रेडियो के दौर के बाद जब टीवी आया तो लोगों ने कहा कि रेडियो समाप्त हो जाएगा, अब रेडियो को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब FM आया तो लोगों ने देखा कि रेडियो के लिए एक नई चुनौती हमने देखी। अब सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को लगता है कि टेलीविजन मृत प्राय है, रेडियो को तो कोई पूछता ही नहीं है, अखबार हमारे बच्चे देख नहीं रहे हैं। ये सारे होने के बावजूद भी सभी माध्यम अपने आप में जीवंत हैं। इसीलिए मैंने दत्ता जी का वो गीत गाया है कि रहे न रहे हम रहेंगे नहीं, आप रहेंगे नहीं, लेकिन माध्यम चलते रहेंगे, उन माध्यमों में काम करने वाले चलते रहेंगे, उन कामों को हम याद करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इसी बात का कि जो रेडियो के साथ चल रहे हैं, रेडियो के साथ जी रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके जीवन में आकाशवाणी का कितना गंभीर योगदान है। मतलब सुबह की सभा अगर शुरू होती है तो आप सुबह की आवाज़ वो आपको उठाती है 6 बजे, और जब आप रात को सोते हैं 11 बजे तो वो लास्ट का आप बात सुन करके रेडियो की बंद करते हैं और सोते हैं। ये वो जी सकते हैं, समझ सकते हैं जिन्होंने इस रेडियो को जिया है, उस प्रकार से आकाशवाणी को जिया है। क्योंकि अगर आपको पुराने गाने सुनने हैं तो अभी आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में गाने सुना रहा है, विदाउट सब्सक्रिप्शन आपके पास कुछ भी नहीं है। आकाशवाणी अभी भी ऐसा माध्यम है जो आपको बिना किसी पैसे के मुफ्त में इतनी अच्छी मनोरंजक सूचनात्मक जानकारियां दे रहा है। जहां तक बात करते हैं मनोरंजन की, तो मनोरंजन का माध्यम रहा है, शिक्षा का माध्यम रहा है, सूचना का माध्यम तो है ही। फौजियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो रेडियो से बड़ा समाचार का माध्यम कोई नहीं रहा है, क्योंकि जब हमारे देश में समाचार, अभी इंटरनेट की बात करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जब विस्तार हुआ तब आपके पास सूचनाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप दिन भर बैठकर युद्ध देख रहे हैं, लेकिन यही समय था जब इन्हीं युद्धों की जानकारी रेडियो ने जिस प्रकार से दी है, जिस मुस्तैदी से दी है, ये उन माँ बाप से पूछो, उन माता पिता से पूछो, या उन परिजनों से पूछो जिनके, उन पत्नियों से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिनके पिता फौज में रहते हैं, उनके पास रेडियो ही एकमात्र माध्यम हुआ करता था जहां से सूचना आती थी। वो माएँ भी आपको मिल सकती हैं कि आकाशवाणी उनके जीवन में क्या अहम भूमिका अदा करता है। तो ये अहम भूमिका 90 वर्ष की हो गई है और मुझे लगता है कि आपके जैसे युवाओं ने इस अहम भूमिका को फिर से एक नई चुनौती के साथ देखा है। जिनको आवाज़ की दुनिया में जाना है वो आवाज़ की दुनिया के लिए लालायित हैं, तो अगर लालायित हैं तो अपने इस जो इच्छा है, अपनी जो कामना है, अपनी जो आकांक्षा है उसको पूरा करिए, अपनी आवाज़ को दिशा दीजिए, आकाशवाणी को सुनिए और सुनाइए।

0: दिखता है।
1: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
2: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
0: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
2: अरे यार
0: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, डीएवीवी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में आकाशवाणी इंदौर की तकनीकी कार्यप्रणाली, कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया और आम जनता के जीवन में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जानकारियां भी साझा की गई। अभियांत्रिकी प्रमुख श्री अभय कुमार गुप्ता जी ने प्रसारण से जुड़ी तकनीकी जानकारियां भी सरल शब्दों में प्रस्तुत की।
5: साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत युवा कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को प्रेरित करने का भी कार्य किया जा रहा है। और इसी क्रम में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग इंदौर में आकाशवाणी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
4: इसी कड़ी में चलिए हम सुनते हैं हमारे अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता जी का आकाशवाणी के 90 वर्षों पर एक छोटा सा संदेश।
6: आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में तीन सबसे मुख्य पिलर होते हैं, जिनमें सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा आप लोगों को सबको पता है पत्रकारिता। और मैं चाहूंगा, चूंकि वो स्तंभ जो तीन स्तंभ हैं उनमें आपका भी एक समाज में इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोग मीडिया के हैं, हम लोग शायद कल के कहलाएंगे, आप लोग आज तैयार हो रहे हो और आप आने वाले कल के कहलाओगे। जैसा मेरे को बताया गया है कि तकनीकी स्तर पे मैं आकाशवाणी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ आकाशवाणी का। आज की डेट में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर दुनिया में कोई चीज़ है, क्योंकि आप जितने भी मीडिया देखेंगे, फिर वो सैटेलाइट से कम्युनिकेटेड हों, फाइबर ऑप्टिक से कम्युनिकेटेड हों, या आपके मोबाइल नेटवर्क से, आप खुद इमेजिन करिए कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है, वार होता है, इनकेस अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, बाढ़ आ जाती है या भूकंप वगैरह आ गया, तो आपने गौर किया होगा कि ये सारे मीडिया बंद हो जाते हैं। अगर वार छिड़ा तो कोई भी कंट्री आपका सैटेलाइट ख़त्म कर सकता है, कोई भी कंट्री आपका फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ख़त्म कर सकता है, तो ये आप मान के चलिए आपका इंटरनेट नेटवर्क ख़त्म हो गया। मोबाइल नेटवर्क भी अफवाहों की वजह से, इन वजह से ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन रेडियो का नेटवर्क आप इतने आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। फिर वो FM चैनल हो या फिर मीडियम वेव हो या शॉर्टवेव हो, शॉर्टवेव हमारा उतना ही काम करता है जितना सैटेलाइट काम करता है। शॉर्टवेव हमारा 1,000, 2,000, 3,000 किलोमीटर, इवन पूरे वर्ल्ड का या अपने ग्लोब का पूरे का राउंड लगा के सिग्नल हमारा आ सकता है। दूसरी चीज़ हमारा मीडियम वेव हमारा यहीं का ट्रांसमीटर 600-700 किलोमीटर जाता है, जो आप आकाशवाणी राव का देखते हो, आपको बड़ौदा, राजकोट, वहाँ तक आपको सुनाई देगा। ठीक इसी तरह से हमारे बॉर्डर एरिए के जो राजकोट में ट्रांसमीटर है या नागपुर में ट्रांसमीटर है या डिब्रूगढ़ में जो लगे हुए हैं चाइना बॉर्डर पे ट्रांसमीटर है, वो उनके अंदर तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर तक उनके अंदर हमारे यहाँ का जो ट्रांसमिशन है वो जाता है। क्योंकि बॉर्डर पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके पास जरूरी नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क भी अवेलेबल हो, या पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मीडियम वेव, शॉर्टवेव और FM ट्रांसमीटर हमारा पूरा प्रसारण उसका उन लोगों को मिलता है। मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम आकाशवाणी में ऐसा नहीं कि जिस तरह से चला आ रहा है कि भाई हम लोगों का 8 जून 1936 से जो गवर्नमेंट ने शुरू किया और उसके बाद आज 90 साल हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग, हो सकता है आप लोगों के ये दिमाग में हो कि हम लोग मतलब ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की चीज़ों को इस्तेमाल करते हों, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, हमारे यहाँ के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं सब में सर्वर हैं, हर एक प्रोग्राम सर्वर में डंप होता है, वो प्रोग्राम मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर से गवर्न होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है उस तरह का, वो पूरा चेंज हो चुका है। हाँ, एडॉप्टेबिलिटी वही की वही है, क्वालिटी में हमारे यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वालिटी के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अगर जो भी इक्विपमेंट्स हमारे हैं, आप मार्केट में जो चीज़ें सुनते हैं उनमें आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा देते हैं, या आपके ड्रम साउंड्स हैं या फिर आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक गिटार टाइप हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसा शादी ब्याह में DJ बजता है उस तरह का, थोड़ी समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको मैं दिन भर DJ सुनाऊंगा तो हो सकता है 4 या 5 दिन के बाद आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाए। सेम पोजीशन आपके जो मार्केट में जो चल रहे हैं वो उनका जो क्राइटेरिया अलग टाइप का है, लेकिन हम लोगों का क्राइटेरिया जो है वो अलग टाइप का है। जो हमारा ब्रांडिंग चला आ रहा आकाशवाणी का, उसका आप क्लासिकल में या किसी भी उसमें सुनेंगे, आपको एक अलग ही हर एक चीज़ का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक वॉइस का, वो सब आपको रिस्पांस सुनाई देगा। उसका कारण क्या है कि हमारे क्या कि इक्विपमेंट जितने हैं वो सब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पूरा कम्प्लीटली जो ह्यूमन वॉइस या स्ट्रिंग या हमारे जो कान का जो सूदिंगनेस है सुनने का, उसको कंसिडर करके लिया हुआ है। साइंटिफिकली आप खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो लिसनर हैं, कई ज़्यादा एज वाले भी हैं, यंग भी हैं, या जो मैक्सिमम लिसनर हैं वो एक बार अगर सुनते हैं सुनते ही रहते हैं, जबकि आप बाकी सॉन्ग जो अगर आप सुनेंगे एक दो बार बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन बाद में उसको आप ड्रॉप आउट कर दोगे, थोड़े दिनों बाद वो अच्छा लगना चालू नहीं होगा। वो आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ये बताता हूँ कि आपने भूपेंद्र हजारिका की वॉइस जो सुनी होगी उसमें उनका सॉन्ग है वो बहुत लो पिच पे है, जिसमें यह है

ये सॉन्ग लो पिच में है। अब हाई पिच में सॉन्ग परवीन सुल्ताना की वॉइस जो है सबसे हाई पिच पे जाती थी। परवीन सुल्ताना के सॉन्ग क्लासिकल तो आपने सुने होंगे, कुछ सॉन्ग में जो एक फिल्म का है वो बताता हूँ जिसमें उनको आपको समझ में आएगा कि उनका सॉन्ग हाई पिच में किस तरह से है। मैं

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: साथियों, इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सुनेंगे आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी को।
2: आज का दिन यह काफी हर्ष का दिन है और काफी अच्छा लग रहा है कि हम आपके संस्थान में आकर आकाशवाणी के 90 वर्ष का सफर जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण क्षण है। आपके पिताजी, आपके दादाजी पहले रेडियो सुना करते थे और उस जमाने में रेडियो संचार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण साधन था। अगर हम रेडियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1923 में प्रसारण सभा का शुरुआत की गई थी और इसके बाद 23 जुलाई 1927 को जो बॉम्बे रेडियो से इसका प्रसारण हुआ और कलकत्ता रेडियो से 26 अगस्त 1927 को इसका प्रसारण हुआ था। 1930 में ऑल इंडिया रेडियो को सरकार अपने प्रसारण सेवा में शामिल किया और दो वर्षों तक 32 तक जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट सर्विस के रूप में इसको चलाया गया और जो आकाशवाणी के रूप में हम जो जानते हैं देश के विभिन्न केंद्रों को 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दे दिया गया। एक रेडियो की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। प्रथम सभा की बात करें तो उस समय संकेत धुन और बिस्मिल्ला खान की शहनाई के साथ शुरू होता है। भक्ति संगीत होता है, फिल्म संगीत होता है, फिर कई प्रकार के स्पोकन वो तो होते हैं, महिला सभा होता है, बाल जगत होता है, खेती गृहस्थी कार्यक्रम होता है, फिर आपका युवा जगत कार्यक्रम होता है। शाम में युवा जगत हमारे केंद्र से बराबर प्रसारण होता है जो युवाओं के लिए होता है। श्रोताओं से जो फोन इन कार्यक्रम होता है, जो विभिन्न फोन के हम लोग बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में और विभिन्न श्रोताओं से किसी भी विषय, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, सामाजिक सरोकार संबंधी विषय हो, किसी भी विषय हो, विभिन्न विषयों पर हम अपने श्रोताओं के साथ इंटैक्ट करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात सारे चैनल को छोड़कर रेडियो पर की, इसलिए उन्होंने रेडियो सुना, रेडियो को समझा और रेडियो के माध्यम से अपने विचार को आदान प्रदान। अगर आप सभी ने रेडियो सुना है तो पहले के जितने भी आईएएस आईपीएस लोग करते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, ये 8:45 का न्यूज हिंदी में आता है और इसी का अंग्रेजी में जो न्यूज आता है, किस प्रकार हम रेडियो के माध्यम से शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं, आपकी जो उच्चारण है, बोलने की जो शैली है, ये लोगों तक इसकी संप्रेषणीयता कितनी होती है, किस प्रकार आप लोगों को अपने प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ा कला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इन संस्थानों में आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आएंगे तो एक अपने आप को उभारने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। आचार्य बीरनो भावे जी ने कहा था, संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना। अभी आप गैर जिम्मेदार हैं लेकिन जब आप सर्विस में आएंगे तो एक हनुमान कूद है और इस कूद में आपके हाथ पांव भी टूट सकते हैं। इसलिए जब आप इस स्टेज में अपने आप को सशक्त करेंगे, सीखेंगे, अपने गुरुदेव से सीखेंगे तो वास्तव में जो है समाज के बुलंदियों तक ले जाएंगे, अपने भी ले जाएंगे और आपके जो समाज के जो लोग हैं उनको भी, उनके भी बौद्धिक स्तर में काफ़ी सुधार करेंगे और एक स्वस्थ समाज के रूप में आप विकसित करने में आपकी अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, जिस प्रतियोगिता की आज हमने पूरे कार्यक्रम में चर्चा की है, अब वक्त आ चुका है उस प्रतियोगिता की विजेता आवाज को सुनने का, जिन्होंने तात्कालिक भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त करके न सिर्फ एक प्रमाण पत्र जीता है बल्कि युवाणी की एक दिन की आवाज बनने का एक अवसर भी जीता है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी नई युवा आवाज सजल जैन को।
1: प्रबुद्ध सदन, आदरणीय अध्यक्ष, कहते हैं हम 57 की तलवारों का जगमग करता आलेख बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के सृष्टि के प्रारूप बने, बुझी नहीं अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, और मिटी नहीं अपनी हस्ती, मिट गए मिटाने वाले। ऐसा मेरा भारत देश 21वीं सदी के 25वें वर्ष को खत्म करते हुए 26वें वर्ष की ओर अग्रसर होता हुआ भारत देश जब आजादी के 77 वर्ष पूरे करता है और विश्व पटल पर अपना परचम लहराता है, तो उसका एकमात्र आधार बनता है लोकतंत्र। और उसी लोकतंत्र की गहराइयों में छिपा पंचायती राज व्यवस्था है मेरा आज का विषय। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था की यदि बात की जाए तो भारत वह देश नहीं है जिसने अभी अभी 1991 में राजीव गांधी द्वारा जब अनुच्छेद 71 के तहत संविधान में पंचायती राज को तोड़ा, तब हमने पंचायती राज व्यवस्था को देखा। नहीं, भारत तो वह देश है जिसने वैशाली गणराज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था को देख लिया था। भारत वह देश है जब उस दौर में भी, उस समय में भी, जब राजाओं का शासन चला करता था, तब भी हम एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे, एक मुद्दे पर चर्चा किया करते थे, और वह राजा जो एक गलती होने पर सरकलम कर दिया करते थे, उनके सामने भी निडर होकर कहते थे कि नहीं, यह बात गलत है। तो उसकी शक्ति यदि कहीं से आती थी तो वो पंचायती राज व्यवस्था से आती थी। लेकिन महोदय, वर्तमान का दौर कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। गांधी जी, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का सपना देखा, जिन्होंने सोचा कि हर ग्राम अपने आप में अपने निर्णय लेगा, वह व्यवस्था पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं दूर होती भी नजर आ रही है। हम कई ऐसी पिक्चरें देखते हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि पंचायती राज में यदि अधिकार महिलाओं के पास है चुनाव लड़ने के, परंतु ताकत फिर भी पुरुषों के पास है, और यही यही व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे पंचायती राज को कमजोर कर देती है। लेकिन महोदय, क्या गलतियां गिनाने से समस्याओं का समाधान हो जाता है? नहीं, विषय पर चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता है। और महोदय, आवश्यकता है कि वह भारत जो विश्व पटल पर अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, यदि उसे और ऊंचाइयों को छूना है तो पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त करना होगा। लेकिन कौन करेगा? अरे हम करेंगे, जब हम सब एक साथ आगे आएंगे। हम तो वो व्यवस्था है जो कहती है कि संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम, अर्थात हम सब एक एक होकर आगे बढ़ेंगे। हमें एक होकर आगे बढ़ना होगा इन पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए। जो व्यक्ति गांव से आता है वो अपने गांव के बारे में सोचे, अरे चुनाव लड़े ना लड़े वो ये जरूर देखे कि वहां व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, तब जाकर कुछ बदलाव हो पाएंगे। इसलिए मैं सजल जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा, आप सभी को आह्वान करती हूँ कि हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, अपनी शक्ति के साथ साथ है भारत पुत्र जागो तुम, रणधीर तुम्ही, बलवीर तुम्ही, हे लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। इस पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी के सपने तक पहुंचाना होगा, और वह तब पहुंचा पाएंगे जब हम एक साथ आगे आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का ये विशेष आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन अनगिनत आवाजों, यादों और भावनाओं का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों को जोड़े रखा।
1: आकाशवाणी ने हमेशा समाज को जागरूक करने, संस्कृति को संजोने और नई प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य किया है और यही कारण है कि आज भी रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि लोगों के जीवन का एक भावनात्मक हिस्सा बना हुआ है।
0: इस पूरे आयोजन में जहां अनुभवी वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए, वहीं युवाओं की सहभागिता ने ये संदेश दिया कि आने वाला समय भी संवाद, सृजन और सकारात्मक अभिव्यक्ति का ही रहेगा।
1: साथियों, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये माध्यम इसी तरह समाज को जोड़ता रहेगा और नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की युववाणी कार्यक्रम की ये खास रेडियो रिपोर्ट आप सभी को पसंद आई होगी, जिसके कार्यक्रम अधिकारी हैं श्री असीम कैथवास और प्रस्तुतकर्ता

अभी युवाणी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं यारियां फिल्म का गीत के की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं, अनुपम आमोद का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे नसीब फिल्म का गीत, कमलेश अवस्थी और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के स्वर में प्रेम नगर फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, एसटी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार के स्वर में प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत। SH बिहारी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। कार्यक्रम में अब सुनिए याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल अनजान के हैं, संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने।

याराना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की है, जयदीप साहनी के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए बागवान फिल्म का गीत, अलका याग्निक और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने।

बागवान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई गजलें। सबसे पहले सुनते हैं ताहिर फराज का ये कलाम।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज के कलाकार हैं हरिहरन। आइए इनसे सुनते हैं कैसर उल जाफरी का ये कलाम।

0: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे हरिहरन की गाई गजलें। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब पेश है लोक संगीत।
1: बोलते गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
0: लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगदीश यादव और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

जय भीम घड़ो और पांडव धर्म सब सीटन को जो बोले वहां तो वो गपूरी करे वो बिल्कुल पक्को छे गांडी ऊपर अर्जुन नाच कर जे काशी जोर राखरण को अर से देव भी शास्त्र मा पुरो यो

दुर्योधन कहो कि दड़का गुरु तम द्रोण रहा करो काम यो विद्या सिखावण को आर्य अर्जुन का विज्ञान बतायो गुरु यो ढंग सी बाण चलावण को यो मारा अरु मंत्र छे पाछो बुलावण को गुरु ज्ञानी गुरु सी यो छटकी ना चला

जगदीश यादव और साथियों के गायन माड़ी लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

तम पायो कोनी हारई सक्या अन कसा बण्या बलवान मंदोदरी कह रही अरे या सो तम करो डूबी ना।

0: तो नाश हुयो नहीं लगी तमारी दाद। अरे यादव कुटुंब तो नाश हुयो नहीं लगी तमारी दाद। फिर यारो आगे काई कह रही, अरे प्रभु का मनावो शरण में
1: जाओ,
0: प्रभु का मनावो शरण में
1: जाओ।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटर वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे ठाकुर भगत सिंह से की गई चर्चा। यह है प्रगतिशील कृषक, साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 बजे डगर विकास की, ये दोनों ही कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आज रात 8:30 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 9:15 चित्रगीत का और 9:30 मन भावन कार्यक्रम का। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण किया जाएगा कल सुबह 6:30। विषय होगा कमाई को खर्चा करने का सही तरीका। खेती की बातें में 6:35 पर जानकारी देंगी तुलसा दरगैया। विषय होगा बायोगैस। 6:40 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस गान। गुड मॉर्निंग इंदौर ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:20 पर। इसमें नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में शामिल टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों से बातचीत पर आधारित संगीतमय कार्यक्रम होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं कल सुबह 8:30। 9:00 मराठी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वार्ता संजीव दिधे से मातृ दिन विशेष पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 आप सुन सकते हैं पंडित मणिराम का ख्याल गायन। राग होगा सावेरी तोड़ी। 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 11:00 होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा दिन में 12:30। स्वास्थ्य दर्पण दिन में 1:00। लोक संगीत 1:30। सुगम संगीत 1:45 पर। फिल्म संगीत 2:00 और चित्रपट संगीत दिन में 2:30। अब एक नज़र शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुगम संगीत में 6:30 कलाकार होंगी माधवी लांडगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रसारित किया जाएगा 6:45 पर। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में कल सुनिए नीलेश जोशी का कविता पाठ। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। रात 8:15 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम होगा कल रात 9:30। इसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:00 सुनिएगा मन भावन कार्यक्रम और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पंडित शंभू प्रसाद पवार का गायन। राग होगा चारुकेशी। ये थे सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
7: है
6: नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
11: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
10: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
12: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें थी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार।

0: भी पुरस्कार मिले।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यदि संसदीय क्षेत्र में बनेगी, 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीने के अंदर अंदर हो गई है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
3: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाला सगलाज किसान भाई बहन ने नाना नानी होने के धरणीधर मिश्र की राम राम राम राम भाई सबके राम राम। आओ भाई बैठो न सुनाओ कैसा कहीं हाल चाल है। हाल चाल तो घरे भी सब ठीक है, मौज चल रही है न, खेती बाड़ी का कामकाज भी अपन अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं, है ना। खेती बाड़ी की बात चली तो एक बात और खास ध्यान में आई, अपने आजकल कितने किसान भाई लोग बोले कि भाई बिजली को बिल ज़्यादा आ रही है, डीजल पंप कितना में लगेगो, बहुत सारी बात हुई ना चौपाल पे, कभी कभी बैठा अपन तो नई नई बात आवे कि कोई दिक्कत है कि कोई परेशानी है। तो एक योजना ना कोई बात ध्यान में आई जो हमारा सब किसान भाई उनके जाननी चाहिए, वह है पीएम कुसुम योजना। ये योजना कहीं भाई तो अपना कितरा भाई लोग को तो मालूम होगी, पर जिनके नहीं मालूम है उनके बताई दा कि ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें किसान भाई उनके सोलर पंप लगाने शुरू 90% तक की भारी सब्सिडी को प्रावधान है भैया। सब्सिडी को मतलब कहीं सरकारी सहायता 90%, जैसे उदाहरण के लिए 1,00,000 रुपया खर्च हो नहीं तो 90,000 रुपया सरकार उन्हें माफ़ कर देगी, सब्सिडी मिली जाएगी। इनका अंतर्गत कहीं करे जो अपना डीजल पंप है, डीजल पंप से छुटकारा मिल जाए न, अपनी सिंचाई सारू सौर ऊर्जा का उपयोग कर सका अपन, और अपने पास बंजर भूमि हो तो सोलर पैनल और लगा लो तो उसमें अलग से बिजली और जो पैदा होगी उनके अपन वापस पाछे बेची सकांगा, अपने अतिरिक्त कमाई हुई जाएगी। तो भैया एक कहीं ना आम का आम ने गुठली का दाम, इसमें खास बात कही है, खास बात यो है सरकार की यो इच्छा है कि डीजल का जो पंप है ना, बिजली का जो पंप है, इनके सौर ऊर्जा का पंप से बदली देवा, इनको बदली कर देवा, है नी, न किसान भाई उनकी कमाई बढ़ावा, न साथेज केंद्र ने राज्य सरकार मिलके इनमें सब्सिडी देवे, और इसमें कर्जा यानी ऋण की भी व्यवस्था रहे जो 30% तक को ऋण रहे ना, 10% खाली किसान भाई उनके लगाना पड़े। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार मिलके जब इसमें 60% दे दे ना, 30% उनको लोन हो जाए तो फिर जाके 10% खाली किसान भाई उनके पास से अपने लगानो, असो इनको योजना को जानकारी है न। इसमें और खास बात कहीं, इसमें 2 MW तक को अपन पंप लगाई सका, प्लांट लगाई सका, बंजर भूमि पे भी लगाई सका उसमें सोलर पावर का न। इनके अलावा जो इसके ग्रिड से जुड़े जो पंप है उनको सौर ऊर्जाकरण हो जाए। इसमें 25 साल तक भैया मुफ्त की बिजली मिले न, जो अतिरिक्त बिजली निकले नहीं उनके अपन बेच के कमाई कर सका। और पात्र कौन है भैया, जो भी भारतीय किसान है सब पात्र है, जिनके पास अपनी कोई खेती बाड़ी के लायक ज़मीन है वे सब पात्र है भैया। तो भैया अब सबके ये भी बताई दें अपन कि इनको आवेदन कैसे करा, जानकारी तो मिली गई पर कहाँ जावा।

वेबसाइट पे कर दो, असो नहीं अधिकृत हो नहीं, कभी गलत वेबसाइट पे चले जाओ नहीं तो अपने साथ धोखो ही जाए। आजकल साइबर क्राइम भी बहुत चल रहा है, तो अपना भैया पंचायत से जानकारी लेनी, अपना सरकारी ऑफिस से तहसील ऑफिस से जानकारी लेनी, सरकारी बैंक के पास जानो, इन सब की जानकारी अधिकृत जगह से ले के अधिकृत सेंटर से अपन इनका वेबसाइट पे जाओ ना, उनका बाद में आवेदन करा, आवेदन कराऊंगा तो अपने निश्चित रूप से सरकारी योजना को लाभ मिलेगा। और हमारा जो किसान भाई बहन हों जो जिनके इनकी जानकारी नहीं है उनके भी इनकी जानकारी दो और उनके भी लाभ पहुँचाओ। तो भाई ये तो अपनी आज की बात, जैसे अपन खेती की बात करते करते ध्यान आई तो बताई दी ना, आज एक खास बात और है वो अब बताऊँगा। सबसे पहला अपन सुनाओ ये लोकगीत, भाई मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गायो ये गीत।

0: वाह भाई वाह, आनंद है क्यों इन लोकगीत में। तो भाई बहन मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गायो यो लोकगीत अपने सुनो, गंगा माई की इनमें महत्ता बताइए। और अब माई की बात चली है, माता की बात चली है, तो सबके मालूम ही होगा आज महिला दिवस है, मातृ दिवस है, माता को दिन है। तो माता को दिन को खास मतलब कहीं, भाई हमारा तो देश सनातन धर्म की संस्कृति पे चले हैं हम, जहाँ अपना देश में जीवनदायिनी नदी के माता का रूप दो, नर्मदा मैया, गंगा मैया, तो अपनी माता तो सदैव पूजनी है ही। हम अपना देश के भी भारत माता का नाम से बुला, मतलब हमारा पूरा देश में माता को सबसे सर्वोच्च स्थान है। एक श्लोक भी है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराज करते हैं, देवता विराजते हैं। तो ऐसा सनातन देश में, ऐसा सनातन संस्कृति वाला देश में आज का दिन, वैसे तो हम 365 दिन साल का 365 दिन ही माँ की पूजा करा, माता के सम्मान देवा, हमारी माता हमारे लिए सबसे पहली शिक्षक हो, है ना, हमारा जो विद्यालय का शिक्षक है वह तो बाद में हमें ज्ञान देवे, सबसे पहली शिक्षक जो है हमारी, सबसे पहली गुरुजी हमारी माँ हो। तो हम सबका मन में एक बड़े आदर सम्मान भाव, ऐसा संस्कार है कि सबसे ज़्यादा पूजनीय माता है। तो इना मातृ दिवस आज का दिवस के दिन हम खास बात से ध्यान रखा हम सब लोग कि हमारा कारण हमारी माँ के आँख में आंसू नहीं आए, हमारे लिए आए वह अलग बात हो जाए, हमारा कारण नहीं आए। ऐसे हम सब वैसे संस्कारित हैं, हम सब अपना अपना हिसाब से ध्यान रखा ही हैं, पर आज का दिन ऐसी बात दिमाग में आई तो अपनी चौपाल पे कह दी मौके न। अब एक बात और आ रही है, वो है कि जैसे अभी जो वर्तमान की स्थिति चली रही खेती बाड़ी की, इन्हीं स्थिति में इन्हीं बखत पे प्रगतिशील किसान भाई कई सोचे न, वो अपना खेती बाड़ी के कामकाज में कैसे कहीं प्रयोग करे, कैसे खेती बाड़ी करे, इन्हें बारे में भी हम लोग बखत बखत पे जानकारी ले। ऐसी जानकारी हमारी सहयोगी बहन मनीषा शर्मा ने ली, तो जो प्रगतिशील भाई है वह ठाकुर भगत सिंह, तो उन्हें कहीं चर्चा करी, सुना अपन।
1: किसान भाइयों, समय समय पे हम आप में से कोई किसान भाई के बुलावा और उनका अनुभव जो खेती में है भी आपसे साझा करा। और आज इन्हीं कड़ी में हमारा साथ है ठाकुर भगत सिंह, जो कि बुरहानपुर से ही हमारा बीच आया है। तो सबसे पहला तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, राम राम।
2: राम राम सभी किसान भाइयों को, ठाकुर भगत सिंह बुरहानपुर वाले की ओर से राम राम, शुभकामनाएं किसान भाइयों।
1: भाई हमारे यो बताओ कि अभी चल रही है खेती में थोड़ा सा किसान भाई के आराम को समय, अभी किसान भाई थोड़ा कहीं का फुर्सत में है, पर फिर भी कुछ कुछ किसान भाई बहुत सारा काम में भी लगे हुआ है। तो अभी गर्मी का समय में किसान भाई कई कई काम करी रहा है, या फिर जो नहीं करी रहा है भी कई काम करी सकता है?
2: अभी किसान भाई कुछ लोग फुर्सत में है, जिनके पास पानी है वो किसान भाई सब्जी भाजी उगाते हैं, और कुछ किसान भाई जायद की फसल मूंग भी लगाते हैं, और जिनके पास पानी का साधन उपलब्ध नहीं है वो किसान भाई अपने खेत रबी की फसल समाप्त होने के पश्चात उसके अंदर जो पत्थर वगैरह है, अवशेष वगैरह है, उनको हटाकर खेत की गहरी जुताई करें, जिससे खेत की उर्वरक क्षमता काफी बढ़े।
1: आपने बोलियो कि किसान भाई गहरी जुताई कर ले ताकि उनके जो आने वाली फसल है या खरीफ की फसल है उनका लिए वो उचित समय भी अभी है, और जो किसान भाई फुर्सत में है उनका लिए काम भी निकल आएगा। तो जुताई करने को जो सही तरीको है वो कहीं है, या जुताई को काम किसान भाई किस प्रकार करे कि जो उनका लिए फायदेमंद रहे?
2: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय कृषि जो है जुताई का विशेष महत्व है, और इस समय गर्मी की गहरी जुताई कृषि कार्य के लिए, कृषि उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक और आय को बढ़ाने वाली सिद्ध होती है। इस समय तेज धूप रहती है, रबी की फसल लेने के पश्चात जिन किसान भाइयों के पास खेती में अगर पानी नहीं है तो वो लोग अपने खेत की साफ सफाई, जैसे पत्थर वगैरह है उनको हटा के और सरसों को हटा के गहरी जुताई करें। आप गहरी जुताई हल से भी कर सकते हैं, कृषि यंत्र ट्रैक्टर से कर सकते हैं, और ये जुताई 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो मिट्टी कड़क परत है वो ऊपर आ जाती है, और तेज गर्मी की वजह से उसमें जो जीवाणु है, अंडे है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो तेज गर्मी से मर जाते हैं। इसी प्रकार उतली जो दबी रहती है जड़े, लावा, ये सब नष्ट होते हैं और खरपतवार भी नष्ट होता है, जिससे क्या होता है, फायदा ये होता है कि रासायनिक खाद का हमको उपयोग कम करना पड़ता है, प्राकृतिक खाद जो है वो भी मिल जाती है, जो गोबर खाद वगैरह मिल जाती है, और कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करके हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको हम बरकरार रख सकते हैं।
1: भाई हमारे ये भी बताओ कि जुताई के लिए किसान भाई उनका लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहे?
2: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जुताई का वक्त अप्रैल से लेके जून के मध्य तक के रहता है। अप्रैल में जैसे आपकी रबी की फसलें खत्म हो गई, आपने खेत को साफ सफाई करके उसको जुताई करके रख सकते हैं। यदि आपके पास कोई जायद की फसल या सब्जी भाजी है तो उसके उपरांत आपको मई से जून के बीच में गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिससे खेत की जो मिट्टी है कठोर परत है वो ऊपर आ जाए। और इस समय बहुत तेज धूप पड़ती है, तेज धूप और गर्मी के मारे जो मिट्टी के अंदर अंडे जो फसल के शत्रु कीट वगैरह होते हैं, पतंगे होते हैं, वो धूप के कारण जल जाते हैं, और जैसे मेथा है और कुछ जड़े हैं ये भी धूप में जल के नष्ट हो जाती है, जिससे कि हमें खरपतवार का कम सामना करना पड़ता है, खरपतवार की नाश हो जाती है। ये गहरी जुताई 20 से 30 सेंटीमीटर तक करना चाहिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, परंतु 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने से हमें जो मिट्टी कड़क परत है वो भुरभुरी हो जाती है और पानी का संचय करने में सक्षम होती है। जो हम चीज़ कोई लगा रहे जैसे कपास है, गन्ना है और तिलहन दलहन की जो फसलें हैं, इनको बहुत फायदा होता है गहरी जुताई से। और हमको रासायनिक खाद का प्रयोग भी बहुत कम करना पड़ता है, कीटनाशक का कम प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लागत कम होती है, किसान भाई को इससे गहरी जुताई से बहुत फायदा है।
1: आपने क्यों किसान भाई के गहरी जुताई से बहुत सारा फायदा हुए, तो कुछ फायदा हमारा किसान भाई उनके बताओ, जिससे कि भी गहरी जुताई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब समय दे और अपनी जुताई को काम है वो अच्छी तरह से करे।
2: किसान भाई को सबसे ज्यादा समय गहरी जुताई देने से क्या होता है कि खेत को गहरी जुताई करने के बाद धूप खाने के लिए छोड़ दीजिए काफी कुछ समय तक के। जितना खेत तपेंगी, जितनी मिट्टी तपेगी उतनी वो उसमें सूक्ष्म तत्व प्राप्त हो गए फसलों को, और फसल अच्छी उत्पादन देगी, मतलब जो उत्पादन होता है वो बढ़ के मिलेगा, और हमको रासायनिक जो हम खाद वगैरह डालते हैं ये कम डालना पड़ेगा, और हमने जो गोबर खाद वगैरह डाली है वो अच्छे से उसमें मिश्रित हो जाएगी, और जो मिट्टी है पानी को संरक्षित करके रखेगी, ताकि जिनके गम पानी भी रहा तो फसल
1: अच्छे से हो जाएगी। गहरी जुताई तो किसान भाई कर लेगा, इका साते साते खरीफ की फसल की और कई कई तैयारी हमारा किसान भाई है जो अभी से कर ही सकता है।
2: खरीफ की फसल की तैयारी के लिए आपने अपने खेत को जुताई करके छोड़ दिया, आपको जो भी फसल लगानी है उसके बीजों का प्रबंध पहले से करके रख ले, और बीज बोने के पहले उनको उपचारित अवश्य करें।
1: बीजोपचार करने के बारे में तो आपने भी क्यों ने और भी बहुत सारा विशेषज्ञ भाइयों ने बताई है, पर बीजोपचार करने की सही विधि हमारा कृषक भाइयों के आप बता दो सकता हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: बीज उपचार की सही विधि है, वैसे तो हमारे सरकार ने जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखे है। आज आधुनिक खेती करने के लिए आज के वर्तमान समय में हमारे वैज्ञानिक भाइयों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। हम पारंपरिक खेती तो करते ही है, लेकिन बीज उपचार करने से फायदा ये होता है कि हमारी फसल में जीवाणु रोगाणु और खरपतवार बहुत कम होती है। तो समय समय पे हमें अपने पास के नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हमारे लिए सरकार ने मदद के लिए धरती पुत्रों के लिए उपलब्ध कराए हैं, उनका सहयोग मार्गदर्शन लेकर हम अपनी खेती को उन्नत बनाएं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए।
1: देखो कृषक भाई उनका लिए जो कृषि वैज्ञानिक है भी वाकई में एक बहुत बड़ा मित्र है जो कि उनका लिए बहुत सहयोगी साबित हो गए हैं। तो यह बात चली जब कृषक भाई और वैज्ञानिक उनका बीच का संबंध की, तो एक बात और उभरी के आवे है मिट्टी परीक्षण।
2: मिट्टी परीक्षण अवश्य कराए, क्यों कि उसमें आपको कौन से पोषक तत्व की कमी है इसका ज्ञान हो जाएगा, और आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपने क्षेत्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके कि उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए ताकि हमारे उत्पादन प्रभावित ना हो और अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ ले सके।
1: और साथ ही साथ यदि अपना किसान भाई मिट्टी परीक्षण कर ही लेगा तो उनके यो भी मालूम पड़ जाएगा
2: इसमें कितना मटेरियल डालना है, क्या डालना है, नहीं डालना है। हमें सबसे पहले तो रासायनिक खादों का बहुत कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी खेती को उन्नत बनाना है, अपनी जो खेती की मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। हम रासायनिक खादों का उपयोग करके अपनी मिट्टी को गंदा ना करें, क्यों कि उसकी क्षमता रासायनिक खादों से कम होती है, और रासायनिक खादों का ये असर है कि मानव जीवन पर भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। कैंसर की बीमारी जो हो जाती, कहीं बोलता मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया, तो उनको ये रासायनिक का दुष्परिणाम उस फसल के माध्यम से मिलता है। इसीलिए अधिकांश किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने नजदीक के कृषि केंद्र में वैज्ञानिकों से संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में उचित तकनीक का और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करें, देश की प्रगति में अपना सहयोग। किसान हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए किसान भाई लागत तो बहुत लगाता है, हमको लागत भी कम करना है, तो हम अपने वैज्ञानिक भाइयों से सलाह लेके समय समय पे बीज उपचार और अपनी धरती माता का संरक्षण करने के लिए गहरी जुताई करके उसको संरक्षित करें जिससे उसकी उर्वरा शक्ति और बढ़े। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें, और जिससे क्या होगा अपनी लागत कम होगी। मिट्टी परीक्षण कराने से हमें खेत में क्या कमी बेसी उस हिसाब से सूक्ष्म तत्व डालना है, क्या डालना है, ये ज्ञात हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी की जो मृदा की जो कमी है वो दूर होगी। वैज्ञानिक लोगों से
1: सही मात्रा में अपन उसमें डाली
2: सही मात्रा में अपन उसको उचित मात्रा में डालकर उत्पादन लेंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
1: देखो भाई आपने बहुत अच्छी अच्छी बात हमारे बताई, पर चलते चलते आप हमारे यू बताओ कि हमारा किसान भाई अपनी कृषि की लागत कम करके उत्पादन अधिक करे, इकलिए और कहीं कर सकता है।
2: कृषि की उत्पादन लागत कम करने के लिए हमें अपने खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से हमारी जो खेती की मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसमें पानी संग्रहण करने की, खरपतवार और कीटों की और जो जड़ें हैं मेथा वगैरह ये सब धूप में जलकर नष्ट हो जाएगी, जिससे हमें हर जो दूसरे उसके उपचार के लिए हम दवाइयाँ लाते हैं ये लाते हैं उसका खर्चा बचेगा और हमारी लागत कम होगी। जैविक खेती की ओर हमको मुड़ना होगा, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें। पूर्व में हमारे पूर्वज जो करते आए प्राकृतिक खेती उसको हमें अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती करने में हमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है। कुछ समय हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन प्राकृतिक खेती हमें फायदा ही देगी रासायनिक खेती की बजाय, और मानव जीवन भी स्वस्थ रहेगा, हमारी आवक भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और देश की हरित क्रांति के अंदर हमारा धरती पुत्र अपना कंधे से कंधा मिला के योगदान देगा। हमारे देश की प्रगति के अंदर हमारे किसान भाई रात दिन जुटे रहते हैं, न धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न ठंड देखते। हमें अपनी धरती माता की रक्षा करना है, इसलिए हमें उसको व्यवस्थित रखने के लिए गहरी जुताई कर संरक्षित करना है, जिससे हमारी मिट्टी उर्वरक क्षमता बढ़े, उसमें पानी की क्षमता बढ़े, जो कठोर मिट्टी है वो भुरभुरी होकर उत्पादन बीज को सूक्ष्म तत्वों की प्राप्ति होकर उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सक्षम होगी। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत तेज है, गहरी जुताई करिए 20 से 30 सेंटीमीटर तक, ताकि जो कठोर परत है वो ऊपर आ जाए और जो अंडे लावा वगैरह कीट पतंगे है, खरपतवार है, कुछ मेता की और जो जड़ें हैं ये धूप से जलकर नष्ट हो जाए और हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़े।
1: तो भयोन जैविक खेती अपनाओ, रासायनिक का जो जहर रासायनिक से सबके बचाओ।
2: जहर से इसलिए मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, घर पिला सको तो तरल पिलाओ, जहर पिलाना तो मत सीखो।
1: ठाकुर भगत सिंह जी, आप हमारा विश पधारिया, हमारा किसान भाइयों के खूब अच्छी अच्छी बात बताई, अच्छा संदेश दिया, इका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इंदौर आकाशवाणी केंद्र का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर किसान भाइयों को संबोधित करने का अवसर मिला। जय हिंद, जय भारत।
0: वाह भाई, बड़ी अच्छी भेंट वार्ता अभी अपन ने सुनी, जो कि वर्तमान कृषि स्थिति पे थी और प्रगतिशील किसान भाई थे भाई भगत सिंह ठाकुर, और चर्चा कर रही थी हमारी सहयोगी बहन मनीषा शर्मा। तो भैया लोग, हम उम्मीद करना कि हमारे जो किसान भाई बहन ने यह भेंट वार्ता सुनी, वे एक से जरूर लाभ उठाएगा। जैसे कि खास बात ये हुई कि अपने को रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करना, यानी बिल्कुल काम अड़ जाए तब की बात अलग है, पर अपना कितना भाई लोग कहीं हैं कि एक अपने रफत में आई हो कि अपने जैसे खरपतवार है तो खरपतवार नाशक डाल दियो, है नहीं, रसायन ले आए ना उनको छिड़की दियो, ऐसा नहीं करना। अपने जितनी भी हो सके कोशिश प्राकृतिक तरीका से न जैविक तरीका से इनको सबको निस्तारण करना, तो निश्चित रूप से हमारे फसल में खर्चों भी कम लगेगो और साथ ही साथ हमारो यानी किसान भाइयों को स्वास्थ्य भी ठीक रहेगो, हवा पानी मजबूत रहेगो, न वो जो उपज पैदा होगी वो उपज में भी जहर नहीं फैलेगा। तो हम सब लोग तो ध्यान रखा ही, हाँ कोशिश करेंगे कि और ध्यान रखा, और अब अपने को ध्यान रखना है एक लोकगीत को। भैया अब सुनना है लोकगीत पाछे बहन उषा व्यास को गायो।

वाह भाई वाह, लगन सारे की बखत चली रही है, नगीद भी होगी भैया, गुथी लाजो ओ मालनिया, बनना को सेहरो। तो भाई अपन शादी ब्याह में तो जावा ही हम, है ना, लगन सारा सब दूर चली रहा है। खास बात को एक ध्यान रखने वाली बात यो है कि उतनो ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। बड़ी मेहनत से, बड़ी हिकमत से, बड़ो खर्चो करी के शादी ब्याह वाला परिवार पूरी व्यवस्था करे है ना, अपने यो खास ध्यान रखनो कि उक में जूठन नहीं छोड़नो। जितनो इच्छा उतनो खूब खाओ पर जूठो नहीं छोड़ो, बस यो सबसे बड़ा अपना जो है अपनी अन्नपूर्णा माता के प्रति अपनी सच्ची जो है भावना यो प्रदर्शित कर सका अपन। न दूसरों पर्यावरण की दृष्टि से डिस्पोजेबल आइटम को, डिस्पोजेबल चीज ना को बिल्कुल कम से कम शून्य उपयोग करनो। पानी को गिलास भी प्लास्टिक को नहीं लेनो, पानी को लोटो रख लो वहाँ पर तांबा को, स्टील को ना उससे पानी पीला। तो ये जो है हमारे जो आयोजक भाई बहन होने उनके भी थोड़े से ध्यान रखना है कि भाई लोगों के केवाड़ा की चिंता नहीं करनी कि कोई कहीं नाम धरेगो, अपने असो कोई चीज़ नहीं करना जो पर्यावरण सरु घातक साबित हो। अपने स्टील का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, कोई सा भी बर्तन हो, उसमें काम करना पत्तल है दोना है अपना है? पर कोशिश करा कि ऐसा प्लास्टिक का आइटम का, प्लास्टिक की चीज़ ना का, डिस्पोजेबल आइटम का पूरा बहिष्कार करना। तो ये शादी ब्याह की बखत चली तो ये बात ध्यान आई ना ना। एक बात और आज अपनी बखत भी हुई लगी कि अपनी चौपाल को अपन आखिरी लोकगीत सुन लें भाई, तो वह है अपना खास प्रदूषण के बारे में। जैसे पर्यावरण की बात चली तो हम सबकी जिम्मेदारी भाई हूँ कि हम प्रदूषण से अपनी धरती माता के बचावा। तो सबसे पहला तो अपन ये गीत देखा, गीत सुना, एक में कई संदेश दे रहा है भाई फतेह सिंह परमार राही, सुना।

वाह भाई, इना प्रदूषण के भगई दीजो भाई, फतेह सिंह परमार आई को गायो, यो भी लोकगीत अपन सुनो। न साथ कार्यक्रम की बखत भी हुई लगी कि काल की तय करना, सुबह खेती की बात में सुनूंगा बायोगैस का बारे में, न सांझे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बात होगी, लोकगीत होएगा, न साथ कविता पाठ होएगा भाई नीलेश सोनी जी को। तो भाई चला और सब किसान भाई उनसे कहा राम राम।

अभी खेती गृहस्थी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
1: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
0: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
1: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
0: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत काजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500

0: करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1,500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
0: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, MSME तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
0: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के MSME, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
1: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरी निकाय हैं, वार्ड मुरीर के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए, जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एक्सेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पद विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आएं। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आएं, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर PMS पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका NPA नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करे, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेमलता सूरवंशी।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
4: 2024 में।
3: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
4: 10,000 का।

0: बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी,
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा सदन कुमार मालवी।
1: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
2: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
1: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
2: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इससे। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
3: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना कोलेन्द्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

0: नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना राजा और रंक फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की थी। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर के स्वर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

प्रेम रोग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में। पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीर जी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
6: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
4: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
7: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
4: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
8: वी हैव सर्टनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी रन वेरी डीप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड our judiciary have made a very significant contribution to this.
3: Hamare samvidhan aur hamari nyayapalika ka bahut bada yogdan hai.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. We have more from our correspondent.
2: In the much-awaited second cabinet expansion in the state today, former state president of the BJP, Chaudhary Bhupendra Singh and Manoj Pandey, who rebelled against the Samajwadi Party and joined the BJP, have been included as cabinet ministers. While Krishna Paswan, representing the Khaga Assembly constituency of Fatehpur district, BJP MLA Kailash Singh Rajput from Tirwa seat of Kannauj, MLA Surendra Dilair from Khair Assembly seat of Aligarh and Legislative Council member Hansraj Vishwakarma have been made ministers of state. Meanwhile, the status of ministers of state Ajit Singh Pal and Somen Tomar has been elevated in the government. Both ministers have been given independent charge. In the 403-member state assembly, the council of ministers is now 60, which is the maximum number. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda. During External Affairs Minister S. Jayashankar's two-day visit to the Caribbean nation, Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in restive Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire.

चित्र गीत में पहले आपने सुना जाल फिल्म का गीत हेमंत कुमार के स्वर में। साहिर के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था। कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बारिश फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्री रामचंद्र का संगीत।

चित्रगीत में आप सुनिए उजाला फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: सब कुछ है कुर्बान,
1: हम भी हैं दिल के शाह जहां।
0: प्यार पे सब कुछ है कुर्बान,
2: जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी,
0: जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी,

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतरा।
1: कार्यक्रम चित्रगीत का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं बैजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वर में। शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

बैजू बावरा फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन सुन रहे सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। श्रोताओं, हर धुन में छुपा है कोई अफसाना, हर गीत से जुड़ा है दिल का तराना। आपकी फरमाइश और हमारे सुरों का साथ लिए चलते हैं संगीत भरी एक प्यारी सी रात। तो चलिए सफर शुरू करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का, जहां बजेंगे वही गीत जिन्हें सुनना चाहता है आपका दिल। तो लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया है, ये वादा रहा फिल्म से। आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की है, गुलशन बावरा के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली छोटू दादा और टेलर आरडी इंगोले। हिंगोली से रामचंद्र सिद्धांत, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले। इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयागराज चौधरी और मालती चौधरी। सतीश बागमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रमेण ये सुनना चाहते हैं चंदनगर सातारा से। विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, माया चौहान कोल्हापुर से। खंडवा से इस गीत को पसंद करते हैं अब्दुल गफार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर डाबर। और रिंधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला बोराखड़े और मंगेश बोराखड़े। तो लीजिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, संगीत वो एहसास है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंचता है, और दिल तक पहुंचते हैं आपके पत्र भी जो आप हमें लिखते हैं अपनी फरमाइश के माध्यम से। तो आपकी अगली फरमाइश क्या है? लेते हैं अगली फरमाइश विश्वास फिल्म से, मुकेश और हेमलता के स्वर में, गुलशन बावरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनना चाहते हैं मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना निवान शर्मा। इसी गीत को पसंद करते हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय, नवनीत, प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल। बलिया से ओम प्रकाश, उषा और अमित कुमार और हैप्पी रॉय। खरगोन से ध्रुव सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। हर गीत अपने साथ कोई याद, कोई मुस्कान और कोई कहानी लेकर आता है और हम उस कहानी को गुनगुनाते रहते हैं। आप भी हमारे साथ गुनगुनाइए और सुन रहे हैं इस वक्त आप कार्यक्रम मन भावन। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है हरियाली और रास्ता फिल्म से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान, आलम शेख, वकील राही और चांदनी नाज। इसी गीत को पसंद करते हैं खंडवा से राजेश धनजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री। मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आजम, चांदनी नाज। गणेशपुर से हिना कौसर और मोहम्मद वकील राही। इसी गीत को पसंद किया है रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम वली उल्लाह नूरजहां ने। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान। रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनल तिवारी और आदिबाती।

कार्यक्रम मन भावन का अगला गीत हमने लिया है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है। फरमाइशों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और सुरों की ये महफिल आपके पत्रों से यूं ही सजती रहे। श्रोताओं, आप हमें खत लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो ये और भी खुशी की बात है। तो इसी तरह हमारे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिए। सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आपको। सुनना चाहते हैं आप सब धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, साइमा हसनैन और खुशी। मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, तुषार कुरने, प्रसिक कामले, एकता कामले, मेघना कुरने, उत्कर्षा कामले और अरुण इस गीत को सुनना चाहते हैं कोल्हापुर से। और इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, स्मिता, पूजा और इनके सभी परिवार के सदस्य।

कभी गुनगुनाइए, कभी मुस्कुराइए, क्योंकि संगीत जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है। सुरों की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और शानदार गीत आपका इंतजार कर रहा है। लेते हैं फिल्म वारिस से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं आप सब राजपुर से घीसु तिलवारी, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो। बिहार से नवासी, हुमेरा नाज, सुमेरा, अबीहा शाहीन, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, अकरम बेगम, इरशद अकरम, रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम और हमजा मुजम्मिल। इसी गीत को पसंद करते हैं। दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और जावेंद्र कुमार। राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, अदीबा। बिहारी कॉलोनी से परवीन, सरफुद्दीन डोम, कुमारवली डोम, कुमारी डब्ल्यू। मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अकरम, आसमा बेलदार और उल्हा।

इसी गीत को पसंद करते हैं। महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब पोतरा, मुश्ताबा राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल अर्जुन और धीरज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
2: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।